पुस्तक संध्या बादम सिलपुच्छ बगल समाधम मुखचूड़ विभूखण सारम त्रैपाल तिहाल विचारम गल माला तिलक ललाटम दो तोती बस्त्र कपाटम जे जानस ब्रह्मं करमं सा फोकट निश्चो करमं को नानक निश्चो त्यावे विण सतगुर बाट।

अगे वस जानिए पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुसफी करे नानक गैसो मिले जे खट।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि

0: वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

0: जय हिंद जी। संधु साहब जय हिंद।
1: जय हिंद जी। जय हिंद। रंगा सिंह जी सुनाओ की हाल चाल है।
0: हाले चाले वाह वाह भली, तुसी अपना सुनाओ।
1: साढ़े बढ़िया
0: बढ़िया ही होना चाहिए, क्योंकि किसान का जो हाल चाल ठीक होगी ना तो फिर ताइयो अपने काम कार वाल खेती बाड़ी वाल चंगी तवज्जो दे सकदा।
1: गल ना इदा उल्ट पुलट भी होंगी है रंगा सिंह जी।
0: वो किवें
1: भी? जे फसल बाड़ी बढ़िया होवे
0: जी
1: फिर बंदे का काम कार नू भी जी करता है।
0: बिल्कुल सही गल है
1: जी। तो जे अगों कुछ नज़र ना आए
0: तो
1: फिर बंदा कहना क्यों मेहनत करनी है।
0: देखो गल ये आ कि एवं नहीं एक कहावत बनी कि मेहनत अगे लक्ष्मी थे पखे अगे पाओ। मेहनत करांगे तो देखो वधिया फसल का झाड़ जिहड़ा आपां लै सकदे आ, चाहे कोई भी फसल होए, सौनी होए, हाड़ी होए या फिर सहायक धंधे क्यों ना हो।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो पक्की गल है। देखो हुण तां समय देखो रंगा सिंह जी ये है कि रोजाना की आमदन के नाल नाल असीं अपने घर दीआं लोड़ां दा भी ध्यान रखिए और फसली भिन्नता वल भी ध्यान दईए।
0: बिल्कुल,
1: ये नहीं भी आप कणक झोना कणक झोने वाली ध्यान दी, होर बहुत सारिया फसल ने
0: जी
1: जिन्हें असी बीज सकते हैं थोड़े वक्फे दियाँ, तो उहदे नाल की हुंदा है कि एक तो देखो कि फसली भिन्नता आ गई, एक सानू वाधू जी आमदन मिल जाती है।
0: बिल्कुल, वेखो गल ये कि लागतों की जिहड़ी भरमार पै चुकी है ना कि आप लागत ज़्यादा लाउन डे हुए, आमदन अपनी उत्थे दी उत्थे ही खड़ी आ। इस नूं आपां जे जोड़ दीए कि खेती जिहड़ी खड़ोत बन चुकी आ, सो इस नूं या इस दे चक्कर नूं तोड़न वास्ते आपां नूं होर फसलां दी वी बिजाई जिहड़ी आ ओह नाल दे नाल करनी पऊगी।
1: हुण जिदां देखो गल करदे होंने कि तेल बीजां दी साडे मुल्क च काफ़ी घाट, कई बार बाहरों भी मंगाउणे पैंदे आ, वह फिर साडा जिहड़ा महंगे भी पैंदे आ।
0: बिल्कुल,
1: जे किसान वीर ध्यान देन तो हुण तां इन्ना वधिया तरीका हो गया किसान वीरां वल्लों कह लो या खुराकी पक्षों भी
0: जी
1: कि लोगों का रुझान जिहड़ा ना जिहड़ियां सरों दे तेल वल काफ़ी वध गया।
0: बिल्कुल,
1: तो ये जिहड़ा हुण

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर दे 6:40 हो रहे ने। आओ सरवण करिए मानस गान प्रोग्राम विचों श्री रामचरित मानस दे लड़ीवार पाठ दी 198वीं कड़ी।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

असी अपनी दूजी सभा दे प्रोग्राम लेके हाजिर होवांगे शाम 4 बजे। शाम 4 बज के 2 मिनट ते तुसी सुनोगे सदाबहार गीत, जिस विच तुहानू पुरानी हिंदी फिल्म

शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आज दे इस प्रोग्राम विच काम दियां गल्लां दे नाल मेरी खेती फलां दी पौष्टिक बगीची विशा बारे जानकारी देंगे डॉक्टर रचना अरोड़ा। 7:45 ते पंजाबी वार्ता सुनोगे, पंजाबी सत्त दा निकास ते विकास। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुखविंदर सिंह ढिल्लों।

0: होंगे डॉक्टर रचना अरोड़ा। 7:45 ते पंजाबी वार्ता सुनोगे, पंजाबी सत्थ दा निकास ते विकास। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुखविंदर सिंह ढिल्लों। रात 8 बजे जापान च होन जा रही एशियाई खेडां बारे प्रोग्राम चेयर्स फॉर भारत 20th एशियन गेम्स 2026 सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो। इस तो बाद 8:30 बजे जिंदगी हसीन है प्रोग्राम पेश किया जाएगा। रात 9 बजे सुनोगे न्यूज़ एट 9 ते 9:15 बजे स्पॉटलाइट। रात 10:02 ते प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश पेश किया जाएगा। इस दे नाल ही समाचार भी रोजाना वांग अपने मिथे समय अनुसार प्रसारित किए जाएंगे। एसी साडे अज प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा तुसी साडे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एआईआर ते वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले सवेर दे 6:55 हो रहे ने। आओ सुनिए संस्कृत विच समाचार साडे दिल्ली केंद्र तो।
1: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् नवदिल्ल्यां सद्य एव सम्पन्नस्य 18वें ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य उपवेशनस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी चिनफिंग इत्यस्य च मध्ये जाते संवादे अनेके विषयाः चर्चिताः। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री भारतस्य चिन्ताः प्रस्तुतवान् तथा उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिक मूलचिन्तां प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शनीया इति प्रतिपादितवान्।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब देशस्य विदेश मंत्रिणा सह अपि उपवेशनं कृतवान्। तत्र क्षेत्रीयानां अन्ताराष्ट्रियानां च घटनाक्रमाणां विषये चर्चा जाता। सऊदी अरब देशे सद्यः एव जाते आक्रमणे भारतेन निन्दा कृता। षड्राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देश्य बंध परियोजना संबद्ध संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेषु राज्येषु उत्तर प्रदेशः, उत्तराखण्डः, हिमाचल प्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः अथ दिल्ली च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनेन किशाऊ परियोजना राष्ट्रीय परियोजना इति घोषिता अस्ति। श्री शाहः उक्तवान् यत् परियोजनायाः वित्तीय भारस्य प्रायः 90% केन्द्र प्रशासनेन वहिष्यते, अवशिष्टं 10% भारं च सहभागी राज्यैः वहिष्यते। दिल्ली प्रशासनेन आशा कार्यकर्तृभ्यः प्रदीयमानं निश्चितं मासिक प्रोत्साहन धनं 3,000 रूप्यकेभ्यः 6,000 रूप्यकपर्यन्तं वर्धितमस्ति। अयं निर्णयः ह्यः नवदिल्ल्यां मुख्यमंत्री पदासीनायाः रेखागुप्तावर्यायाः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मंत्रिमण्डलोपवेशने स्वीकृतः। सम्प्रति दिल्ल्यां 25,770,000 आशा कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। एतदतिरिक्तं दिल्ली प्रशासनेन राष्ट्रीय राजधानी

0: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमरीका संयुक्त युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0% व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेन देन पर अनिवार्य रूप से 0% MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेन देन पर कोई मासिक सीमा, लेन देन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।

0: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहाँ आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में एनएसजी की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
5: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्धपर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू

0: के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपीआई लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा। भारत ते अमरीका दरम्यान सांझा फौजी अभ्यास कल उत्तराखंड दे औली विखे शुरू होया। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत नाल मुक्त व्यापार समझौते नूं लागू करने लई कानून पास कर दिता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड का कहना है कि भारत कोल अपनी मजबूत आर्थिक बुनियाद ते निजी खेत्र की गतिशीलता के बल ते विश्व विकास नूं अगे वधाउण की समर्थ है। ते भारत ने दूजे 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान नूं 7 विकटां नाल हरा के 3 मैचों की लड़ी में 2-0 की जेतू लीड लै ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपीआई लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों लई जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MTR ढांचे अधीन आने वाले लैण देण अते व्यापारियों नूं 2000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चार्ज सिर्फ 2000 रुपए तो वधे व्यक्ति तो व्यापारी लैण देण ते ही लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप प्रदाता प्लेटफॉर्म फीस या लुकमें खर्चे नहीं वसूल सकेंगे। मंत्रालय ने बैंकों को हदायत की है कि वो ये यकीनी बनाएं कि व्यापारी यूपीआई भुगतान राही मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का बोझ काका ते ना पाउन। 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी लैण देण ते 0.4% दी मामूली MDR दर लागू होगी, जबकि 75,000 रुपए अते इस तो वध दे उच्च मूल वाले लैण देण ते MDR दी वध तो वध सीमा 300 रुपए प्रति लैण देण निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने दसिया कि व्यक्ति तो व्यापारी श्रेणी तहत यूपीआई QR कोड राही प्रति महीना 1,00,000 रुपए तक की रकम प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों लई सारे लैण देण ते 0 MDR की सहूलत जारी रहेगी। इस तो अलावा रेलवे, दूर संचार, बीमा, ईंधन अते खेतीबाड़ी समगरी के खेतर विच 2000 रुपए तो वध दे लैण देण ते 5 रुपए प्रति लैण देण दी 1 साल MDR दर लागू होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि व्यक्तियों लई मुफ्त UPI लैण देण ते कोई मासिक कोटा लैण देण दी गिनती दी सीमा जां वक वक पदरां वालियां सीमावां लागू नहीं होंगियां। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
0: मंत्रालय अनुसार व्यक्ति ते व्यापारी विचकार होण वाले कुल लैण देण विचों लगभग 96% लैण देण प्रभावित नहीं होणगे। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि MDR ना तो कोई टैक्स है ते ना ही सरकार जां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI वालों लाया गया कोई चार्ज। इस नूं UPI दे संचालन अते निरंतर विस्थार विच सहायता लई बैंकां ते भुगतान एप्लीकेशन मुहैया करवाउण वालियां विचकार वंडिया जांदा है। भारत अमरीका सांझा फौजी अभ्यास कल उत्तराखंड के औली विखे शुरू होया। उद्घाटनी समारोह औली विखे विदेशी सिखलाई केंद्र विखे आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान विच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विखे भी किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोहां फौजां विचकार आपसी तालमेल नूं मजबूत करना, उभरदियां चुनौतियां नाल निपटना अते दवली रक्षा भाईवाली नूं होर मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नवी दिल्ली में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग विचकार हुई मीटिंग दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों को बताया कि मुलाकात दौरान प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति को भारत की चिंताओं से जाणू करवाया है। पाकिस्तान वालों दहशतगर्द तड़े जैश मुहम्मद के मुखी मसूद अजहर से 70,00,000 रुपए के नाम के ऐलान बारे श्री जायसवाल ने कहा कि गुमराह करने की अजिहां कोशिशां कोई नवीं नहीं ने, भारत पहले भी अजिहां कोशिशां

0: देख चुका है।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत नाल मुक्त व्यापार समझौते नूं लागू करने लई कानून पास कर दिता है। इस नाल दोहां देशां विचकार महसूल विच महत्वपूर्ण कटौती ते व्यापार दे वाधे दा राह पद्धरा होएगा। यह बिल विरोधी लेबर पार्टी के समर्थन नाल पास होया। इस बिल के हक विच 93 अते विरोध विच 29 वोटां पईआं। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले ने कहा कि यह समझौता बरामदकारां नूं तुरंत अते महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। उन्हां उम्मीद कटाई के ए उच्च पद्धरी व्यापार समझौता इस साल के अंत तक लागू हो जाएगा। समझौते तहत भारत लई न्यूजीलैंड दी लगभग 95% बरामदा ते महसूल जां तां खत्म हो जाएगा जां बहुत घट कर दिता जाएगा। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF का कहना है कि भारत को अपनी मजबूत आर्थिक बुनियाद, निजी खेत्र की गतिशीलता ते वधदी तकनीकी समर्था के बल ते विश्व विकास नूं अगे वधाउण दी समर्थ है। IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरैक्टर नाइजल क्लार्क ने भारत नूं दुनिया की सब तो तेजी नाल वध रही अर्थव्यवस्था दस्या। उन्होंने यह बयान भारत की 5 दिना यात्रा पूरी करने तो बाद जारी किया है। अपने दौरे दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ते नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लाहरी नाल मुलाकात की। क्लार्क ने भारत के गतिशील निजी खेत्र, विशाल प्रतिभा पूल अते तकनोलॉजी अते निर्माण विच तेजी नाल वध रही समर्थावां की प्रशंसा की। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई ते पेंडू विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अज एक दिन ते बिहार दौरे ते जा रहे ने। वो हड़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करनगे। पटना विच श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ते सीनियर अधिकारियों नाल एक उच्च पद्धरी मीटिंग करनगे। मीटिंग विच हड़ां संबंधी हालत, आफत प्रबंधन, राहत ते बचाव कार्यां ते किसानों नूं दित्ती जा रही सहायता का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान बिहार में हड़ां संबंधी हालत गंभीर बनी हुई है। आफत प्रबंधन विभाग मुताबक 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग हड़ां तो प्रभावित ने। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन मुहिम लई एक गीत जारी किया है। यह गीत प्रसिद्ध गायक अते संगीतकार शंकर महादेवन वल्लों गाया गया है। यह जनतक भागीदारी राही पानी की संभाल अते मींह दे पानी नूं इकट्ठा करन दे देशव्यापी अंदोलन नूं संगीतमई अपील करता है।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सीखी।
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: प्रभजोत जी मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
3: बिल्कुल सुखजीत जी तब्दीली तो हुई है।
2: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
3: देखो जी जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
2: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
3: बिल्कुल जी ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
2: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
3: जी।
4: प्रसार भारती एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओंबड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: प्रोग्राम चल रहा है जी महक पंजाब दी। प्रोग्राम च आखरी गीत मन्नत नूर दी आवाज़ च।

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। प्रोग्राम शुरू हो गया जी। हेलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते प्रोग्राम लेके हाजिर हो गया जी तुहाडी होस्ट ते दोस्त देविका। भाई दोस्तों तुहानू सारियां नू पता है कि इस प्रोग्राम विच तुसी सुन सकते हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत। तो इसलिए करना की है वह भी मैं तुहानू दस दिनी हाँ। भाई इसलिए तुसी चुकना है फोन ते मिलाना है साडा नंबर। जी हाँ, साडा नंबर है 2342173। ये नंबर मिला के पहुँच जाना तुसी साडे स्टूडियो, साढ़े नाल करनिया गल्लां बातां, सानू दसनी अपनी फरमाइश। तो जिहड़े कॉलर सानू जलंधर तो बाहरों कॉल करनगे ना, वो जलंधर का एरिया कोड लगाना ना भुलन। जलंधर का एरिया कोड है जी 0181। तो जदों तक असी अपने पहले कॉलर का इंतजार करते हैं ना, आओ तुहानू प्रोग्राम विच सुनवाने लता मंगेशकर ते किशोर कुमार का गाया एक गीत।

0: प्रोग्राम चल रहा जी हैलो फरमाइश ते प्रोग्राम च हुणे तुसी सुनिया लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दा फिल्म अभिमान चोलिया गीत ते इस गीत तो बाद प्रोग्राम च साडे अज दे पहले कॉलर भी साडे नाल जुड़ गए ने आओ जानदे हां कौन आए ने कित्थों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने हैलो बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच की हाल चाल ने जी जी शुक्रिया देखो साडे जो सुनन वाले दा साडे स्रोतां दा हाल वधिया हुंदा ना साडा अपने आप वधिया हो जांदा ते तुहाडी ते आवाज सुन के लग रहा है कि तुहानू बहुत खुशी है प्रोग्राम दा पहला कॉलर बनन दी तुहाडी आवाज तो खुशी च लग रही है गीत आ रहा किशोर कुमार महिंदर कपूर दी आवाज च बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई
1: धन्यवाद

0: नहीं,
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल।
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी।

0: और वक्त की है रात तेरी है, और वक्त की है रात तेरी है।
1: किशोर कुमार महेंद्र कपूर ते साथियां दे गाए इस गीत तो बाद साढ़े अगले कॉलर भी साढ़ा नंबर 243-143 मिला के साढ़े को ना पहुंचे ने। आओ जान दे आ, कौन आए ने, कितों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हेलो
2: जी, प्यार भरी सत श्री अकाल जी सारे आकाशवाणी परिवार को।
1: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कितों बोल रहे ने?
2: बंसी लाला जी, पिंड तेजा मोड़ी, जिला अंबाला जी।
1: बंसी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल है?
2: बल्ले बल्ले, बढ़िया फोन लग गया, और बढ़िया हो गया।
1: हाँ, ये तो है, वैसे तो हाल चाल वधिया हुंदा, पर जो फोन लग जाता है ना फिर हाल चाल होर वधिया हो जाता
2: है।
1: जो शुरू शुरू च लग जाए फिर होर वधिया लगता, क्योंकि फिर इको बारी तसली दे नाल आराम नाल बैठ के बंदा बाकी प्रोग्राम सुन पांदा है ना। नहीं तो हाँ, नहीं तो ये चिंता रहती है कि बस फोन लग जाए।
2: हाँ, रोज तो लगता नहीं
1: जी, जी ते चलो बंसी लाल जी, हुण तुहाडा फोन दा लग गया ते तुहाडे चेहरे तो खुशी भी पता चल रही है, ते हुण इस खुशी नूं असीं होर वधा दिंदे आ। गीत दस दो, केड़ा सुना दिए?
2: ये मेरा गाँव मेरा देश फिल्म का जी, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानी।
1: ला जी, ये गीत आ रहा तुहाडे रेडियो सेट ते, बहुत बहुत

लता मंगेशकर दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश विच साडे अगले कॉलर भी साडा नंबर 2342173 मिला के पहुंच गए ने।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो,
3: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
4: अजही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ली रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
5: खेडा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। गिरगिट वांग रंग बदल दी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमजां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदाना दा रोमांच, मैदाना च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानू सुणाउंदा। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
6: अंतराल तो बाद एक बार फिर तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा हैलो फरमाइश, ते अंतराल ते जान तो पहला सानू साडे कॉलर अपनी फरमाइश दस गए सी, आओ उन्हां दी फरमाइश पूरी करदे आ। प्रोग्राम जगला गीत सुनवान जा रहे हैं मोहम्मद रफी ते आशा भोसले दी आवाज़ां च।

0: मैंने कचरा कर दिया सबके सामने। रानी की बच्ची इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी थी।
1: अरे बुद्धू, बापू ने कहा है

0: मोहम्मद रफी ते आशा भोसले दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साडे कोल अगले कॉलर भी आ गए ने, आओ जानदे हां कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो
1: सतिवाल जी,
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने? होर सुनाओ अज केड़े गीत सुनना चाहोगे, केड़ी फरमाइश ले आए हो?
1: आवाजा ने मोहम्मद रफी साहब से आशा दूसरे दिया। जब से तुमने देखा है आंखों में तुम सुन हो, जब से तुमने देखा है आंखों में तुम सुन हो, अंधी नहीं कहते हैं आंखों में तुम सुन हो।
0: लो जी, एक गीत आ रहा तो हाडे रेडियो सेट ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लिए।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम चल रहा जी, हैलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। प्रोग्राम च साडे अगले कॉलर भी साडे कोल आ पहुंचे ने। आओ जानते हैं कौन आए ने, कित्थों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हैलो हैलो
2: सत श्री अकाल जी,
1: कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
2: हैलो
1: हैलो, हां जी, कौन बोल रहे
2: जी? हरचरण सिंह रखरा बोल रहे हैं जी।
1: हरचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: जी
2: बहुत देर बाद कॉल लगी है।
1: अच्छा, देर बाद लगी है।
2: गलबात बहुत अच्छी हो रही है
1: जी। जी शुक्रिया।
2: आवाज थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है थोड़ी
1: जी। शुक्रिया,
2: बहुत अच्छी गलबात कर रहे हो
1: जी। शुक्रिया जी। ते हरचरण जी, देर बाद भी कॉल लगी है ते प्रोग्राम दे अखीर दे नेड़े तेड़े ही, मतलब थोड़ा जिहा रह गया टाइम प्रोग्राम च, है ना?
2: हां जी
1: जी, दस दो। हां जी,
2: बंबई का चोर किशोर कुमार दा आवाज विच हसरत ही रही
1: लाजी।
2: दिल में वर्डिंग बहुत अच्छी है जी।
1: जी जी,
2: कुछ मेरे दिल दे करीब है, बहुत अच्छा गाना गाया हुआ है।
1: लो जी, तुहाडे दिल दे करीब है ते असी तुहाडी फरमाइश भी पूरी करांगे जिहड़ी तुसी अज सुनन दी कीती है। गीत आ रहा तुहाडे रेडियो सेट ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करन लई।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई क्षेत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर

0: लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डी एन डुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित महान साधिका ने अपनी दिव्य स्वर साधना से भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व भर में गौरवान्वित किया। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। केरलम में अन्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

इस धमाकेदार गीत दे नाल मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च सानू कई सारे स्रोतियां ने अपनी फरमाइश दे गीत लिख के भेजे ने। मैसेज दी फॉर्म विच उन्होंने सानू मैसेज किया जी 94-655-3677 ते। तुसी भी इस नंबर ते मैसेज कर सकदे हो ते दस सकदे हो कि तुसी केड़ा गीत सुनना चाहुंदे हो। असी पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडी पसंद दे गीत तुहाडे तक लैके आईए। आओ फिर देखते हैं कि साडा अज दा पहला मैसेज किदा आया है। पहला मैसेज आया जी पिंड अलवाणा म्याना तहसील पायल जिला लुधियाना तो दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा महतबीर सिंह रायपुर दा। अगले साथी ने जी पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहिब तो भोला सिंह सिद्धू पूरा सिंह गहलोत राजा सिंह वड़िंग मेन बाजार हठूर तहसील जगराऊं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह रजिंदर कौर इंजीनियर अमन

0: दीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर, पंचकुला सेक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भविक टिंगरा, सिद्धार्थनगर दरियापुर बागली तो गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। अगले साथी ने श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, पिंड नथाना बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा। ते इस तो अलावा होर भी कई सारे मैसेजेस आए ने, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश तो। अगला मैसेज आया जी जिला मुरादाबाद, पिंड दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश तो, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून दा। ते अगले साथी ने रिम्पी सिंह, पाल सिंह, सलीम खान, तनवीर कौर, पिंड पहेरी, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब तो। आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर है मलकीत सिंह दी आवाज विच।
1: Hey Shava!
2: Hey Shava!
1: Hey Shava!
2: Oh, hey Shava!

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंती तो इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो लिखते हैं अगले साथी ने जी रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया बलविंदर सरा गुणतास रमनदीप मनिंदर सरा पिंड मोरजट सिखा हनुमानगढ़ तो अगले साथी ने हीरा मनी वर्मा पारस मनी वर्मा पुष्पेंद्र मनी वर्मा ते नोखेलाल वर्मा दंतरेगी भाटावारा छत्तीसगढ़ तो अगली फरमाइश आई है जी जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य एंजल नेहा अंजलि शुभम ते लवली ए लिखते ने जी पिंड ककरेली तो मखू तो मैसेज है बिरला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी मनीष बजाज दा अगले साथी ने चकला बाजार समाना शहर तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू स्माइल खुशदिल हंसमुख लाल जिंदल संजीव सुनीता बंटी जिंदल आरजू महक खुशदिल हरजीत कैंत मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो लिखते ने अगली फरमाइश है क्रियांश बगड़िया योगेश बगड़िया ओम बगड़िया रजत ते गरिमा बगड़िया दी गांव बांडीवाला फजिलका पंजाब तो मोहाली चंडीगढ़ तो मैसेज है टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो लिखते हैं शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज जसपाल भारती वीना भारती सुरेंद्र मनदीप डिंपल युवराज हैप्पी ए लिखते हैं जी साउथ एविनिया अबोहर तो सतीश कुमार बांसल पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डब्बाली तो संजय डींगिया नमन डींगिया पार डींगिया बागपत उत्तर प्रदेश तो अगले साथी ने मेन बाजार मंडी लादुका जिला फाजिलका तो वरिंदर कालरा रेखा कालरा परीक्षित कालरा ते प्रांची ढींगरा भोपालगढ़ राजस्थान तो मैसेज है धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशा छीपा ईशान छीपा ते पूजा परिहार दा सब्जी मंडी झज्जर तो बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया मयंक भाटिया ते अगले साथी ने मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिट्टू सप्पल प्रभजोत सप्पल मनजोत सप्पल पिंड कबूर शाह खुबन जिला फाजिलका तो बलतेज नवजोत हरमन हैरी हैप्पी शिवा गोप प्रेम गोप कपिल गोप शिवांश गोप संगीता गोप लिपि दिवाली गोप पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड तो पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा ते भूमिका अरोड़ा ते पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो मोहन लाल राठी ओम प्रकाश राठी शगुन राठी लवकुश वर्मा शत्रपाल सिंह खंगूरा रजिंदर सिंह खंगूरा बाबू सिंह मेने वाला काका बट्टी आओ फिर इन्हें सब दी रली मिली पसंद प्रोग्राम का अगला गीत हाजिर कर दें हंसराज हंस की आवाज़

प्रोग्राम चल रहा जी, तवाग जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, शिफाली शैफी ते मास्टर डेविस दा। अगले साथी ने जी जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह। ये लिखते ने जी जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो। अगले साथी ने सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक ते विनोद पुरी अनारकली बाजार जगराऊ तो। अगली फरमाइश है जी बेअंत सिंह, बस स्टैंड जलालदीवाल, जिला लुधियाना तो लिखते ने निखिल भाटिया, नीति भाटिया, महरीन भाटिया, ब्रैमटन कैनेडा तो। इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह, पवनीर ग्रोवर, आदर्श नगर बठिंडा तो। बुलहार शाह तो लिखते ने सूरज लोंडे, प्राची ते एकलव्य लोंडे, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खन्नी, मोहम्मद अल्तमश खन्नी, रमेश गोड़ ते मोहम्मद शादाब खन्नी। ए मैसेज है जी वैष्णव कलोनी सनावत तो। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी ते मोहम्मद कलीम अंसारी, नवी बस्ती गंज डुडवारा तो। अगले साथी ने जी कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला तो रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल ते गुरशब्द सिंह राहुल, अर्शदीप सुरजीत सिंह। ए मैसेज है जी अमरकोट तो। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे लिखते ने शाहजी नगर देगलूर, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो। नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नंदचंद मल्होत्रा, खैल बाजार पानीपत तो। शिवाजी कलोनी रोहतक तो मैसेज है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का ते डुगू भाविका सिक्का दा। इंद्रजीत मांगा ते नीलम मांगा लिखते ने जी पिट्सबर्ग कैलिफोर्निया USA तो। शिवाजी चौक कटनी तो मैसेज है अनिल तामरकर, ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू, रजन, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना मोना, हनी यश ते सौम्या। छत्तीसगढ़ दंतरेगी तो भागवत वर्मा, शांति देवी, नीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा। अगले साथी ने सतीश मिगलानी, विवान मिगलानी, सीमा, महावीर संधु, मलोट कैंप, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, नजदीक बस स्टैंड भुज हनुमानगढ़ फाजिलका तो। पिंड डाका नाखुईया सरवर तो मैसेज है जी रमेश बिल्ला चावला, रायजल, हेजल, विहान चावला, आस्था, जयश्री, संतोष, हेमंत, दीपक, रमेश, रिबू, बब्बू ते विहू चावला दा। अगले साथी ने बिहारी कलोनी शहादरा दिल्ली तो वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ तो, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना। पिंड फ्रांसी हिसार तो मैसेज है राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी दा। पिंड फुल्लो मिठी बठिंडा तो हरजत सिंह ढिल्लो, दीपिंदर सिंह, गुरवारिस सिंह ढिल्लो, पोला सिंह बैनीवाल ते अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रीतिशा संधु ते मैक्स। ए मैसेज लिखते ने जी हरगोबिंद नगर नवा शहर तो सुरिंदर संधु दे नाल। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद आ प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आं आसा सिंह मस्ताना दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो संगीता कवर दातार सिंह शेखावत तुषार सिंह रिंकी शेखावत दा अगले साथी ने मेहम गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति राणी गुरमंत शंभूदयाल खटक विमला देवी खटक अमरजीत सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार ते कुमारी पूजा खटक ए लिख देने जी पिंड जाखोद राजस्थान तो अगले साथी ने हुमनजीत सिंह नवजोत कौर हरजोत सिंह रंजीत विहार पटियाला तो अगली फरमाइश आई है जी योगनगर बुढ़लाडा पंजाब तो प्रेमलता मेहता नरेंद्र मेहता सुनीता हनी ते सिमरन मेहता दी अगले साथी ने मोहब्बत नगर कपूरथला तो करनैल सिंह बट्टू गुरफतेह सिंह ते हरनीस कौर पिंड जामका अमृतसर तो लिखते ने योगी टेलर दविंदर सिंह राणा राजा सुखा जोगी ते अमन पलक सोनी अगले साथी ने सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान गर्वी ते हिमाक्ष एम खलील कुरैशी नुसरत बेगम एजाद कुरैशी ते अरिबा हबीबा लिखते ने जी पटियाला रोड गंज रुडवारा उत्तर प्रदेश तो गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा परवीन तनेजा पायल निताशा ते कैरवी तनेजा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो मैसेज है मन्नत कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी ते दिशा गोस्वामी दा अगले साथी ने एसएम जावेद गुमला झारखंड तो वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मैसेज है मिंटू टोमस पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा दा अगली फरमाइश है बूटा बिंदर सिंधा तालीवाल वाला तो प्रगट सिंह तालीवाल रवि पारसोदी जसवीर कौर ते बलराम राज गुरसिमरन वीर कौर मान हुसनप्रीत कौर मान ये लिखते ने जी अगले साथी ने अमित कुमार सरोज सुमन सदूल शहर राजस्थान तो गंज रुडवारा तो शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैजान खान ते अनु खान ते पिंड कोतला कला अमरजीत तो लिखते ने अमरजीत कंदोला हरजिंदर कौर दीपक अंजलि विजय गोयल बजीतपुर कटिया वाली फाजिलका तो अश्विनी गोयल प्रीतम सरपंच गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब तो संत राम चावरिया अंकुश कुसुम ते पूनम आओ फिर इन्हों सब रली मिली पसंद आ प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ मनमोहन वारिस दी आवाज़

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से

0: तीन दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आहुन सुनदे हैं प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम हसदे बड़े लेके प्रभजोत हाजिर है।
0: प्रभजोत दे नाल हरप्रीत भी हाजिर है जी। की हाल चाल
1: सारे? बहुत वधिया हरप्रीत, तुसी सुनाओ की हाल चाल ने?
0: देखो प्रभजोत जी, जदों असीं इकट्ठे मिलदे आ, एक दूसरे नु मुखातिब हुंदे आ, स्पेशली जदों असीं वसदे वेड़े दे नाल मुखातिब होना हुंदा
1: जी,
0: उदों साडा हाल आपे वधिया हो जांदा।
1: बिल्कुल जी, और मैनूं लगदा है सुनन वालियां दा भी वधिया हो जांदा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इस वेले भैणां जिहड़ियां ने उह थोड़ी जिही विल्ली हो जांदियां। बच्चे स्कूलों हले आए नहीं है, घर दे काम काज हो गए उहनां दे, ते थोड़ा जा उन्हां नूं भी रिलैक्स हुंदा, और सारे जने अपने रेडियो सेट ते अपनियां एप्स खोल के बैठे होंगे कि प्रोग्राम वसदे वेड़े जिहड़ा ओह आण वाला है।
0: बिल्कुल जी, और उहदे विच वख-वख सिलसिले हुंदे ने, वख-वख चीज़ां लैके साडी कोशिश हुंदी है कि असीं मुखातिब होईए, कुछ ना कुछ इदां दीआं गल्लां सांझियां करिए कि जिहदे नाल सुणन वालिआं नूं वी लगे कि हां जी अज तां बहुत वधिया सानूं नॉलेज मिली है।
1: बिल्कुल जी, देखो वैसे जिहड़ियां औरतां ने बहुत सारी तरक्की कर चुकी है, की कहिंदे हो हरप्रीत?
0: बिल्कुल जी, चाहे ओह साइंस दी गल होवे, चाहे टेक्नोलॉजी दी, चाहे इनोवेशन दी, जिन्नू आपां कहिंदे आ तरक्की दी गल, जदों असीं करदे आ ते फिर औरतां किसी भी फील्ड दे विच पिछे नहीं है।
1: बिल्कुल, और देखो किन्नी ज्यादा तरक्की है ना इस टाइम ते, स्पेस दे विच भी जिहड़ियां औरतां ने ओह पहुंच चुकियां ने, और केड़ी थां है जिथे औरत नहीं है, चाहे ओह ट्रेन दी पायलट है तां ओह भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है, एरोप्लेन भी चला रही है ना, और देखो किन्नी सारी तरक्की ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
0: ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਔਰ ਏਅਰਫੋਰਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨੇ, ਰਾਦਰ

0: जिनको मैंने बचपन में ट्रीट किया था जब छोटे से थे, एक दो साल के थे, अभी वो जो है ना बिल्कुल यंग होके आते हैं, और कई बार ऐसे पेशेंट है उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि उनके से शेख थे बचपन में, उसको ट्रीट किया और उसका इलाज हो गया। एक अभी बच्चा आया था मेरे पास में, उसको मैंने जो है करीब 8-9 महीने का बच्चा था जब मैंने देखा था, तो उसको एक साइनोटिक हार्ट डिजीज थी जिसे कहते हैं TGA, कंजेनाइटल ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। वो ऐसी बीमारी है जो कि अगर उसको इलाज ना किया जाए, ऑपरेशन ना किया जाए, तो बच्चा जो है वो नहीं जिंदा रहता। तो उसको एडवाइस किया था सर्जरी के लिए, उसमें सर्जरी होती है आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन, मीन्स नाड़ियां उल्टी जुड़ी होती हैं उसमें, जिसमें जो फेफड़ों को ले जाने वाली नाड़ी होती है वो दूसरे चैम्बर में होती है, और जो है बॉडी में ले जाने वाला एओटा होता है वो दूसरे चैम्बर से निकलता है, तो उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो उस टाइम उसका जो ऑपरेशन हो गया था, अभी वो करीब करीब जो है 10 साल के बाद में मेरे पास में दोबारा चेक कराने आया
1: जी,
0: उसी के लिए, और बच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इज डूइंग एवरीथिंग, दौड़ रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है
1: जी, जी,
0: बिल्कुल देख के उसको बहुत खुशी होती
1: जी। डॉक्टर साहब, इस दिल की बनतर के हो जाइए, किदां दा बनिया होया दिल, सानू किदां असी किसे नू डिस्क्राइब करांगे कि यह दिल है? अक्सर असी कहने होने कि मुट्ठी भर दिल है जी, की सचमुच मुट्ठी दे आकार दा हुंदा है?
0: बिल्कुल सही कहते हैं, ये इसका साइज लगभग मुट्ठी के बराबर ही होता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मींस मांसपेशियां होती हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, जो 4 चैम्बर जिसमें ब्लड आता है, राइट साइड चैम्बर होता है जिसमें ब्लड, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गंदा ब्लड जिसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, वो आता है, फिर वो लंग्स में जाता है ब्लड, वहां पे ऑक्सीजनेशन होता है, फिर ऑक्सीजनेशन करके बॉडी जो है पंप करती है लेफ्ट साइड के हार्ट चैम्बर में, और वहां से फिर बॉडी में सर्कुलेशन होता है
1: जी,
0: सब जगह जाता है। ये कुदरत का एक बहुत ही जो है ना नायाब तोहफा है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो नेचुरल हार्ट है उसको बहुत सारी कोशिश की गई है आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की, लेकिन अभी तक कोई आर्टिफिशियल हार्ट नहीं बनाया जा सका।
1: बिल्कुल,
0: तो ये नेचुरली बहुत ही एक नायाब शरीर का अंग है
1: जी,
0: जो शुरू से काम करता है, मतलब इसमें कभी कोई रेस्ट नहीं करता। बाकी सारे शरीर के हिस्से देखे, उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता है, हार्ट को कोई रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिलता,
1: चाहे आप
0: सोते भी हो तब भी चल रहा है, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब जगह हर वक्त चलता रहता
1: जी।
0: तो हार्ट का जो है ना ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, पुराने वेलियां विच कहंदे सी कि जे किसी नू हार्ट अटैक हो गया तां इहदे बचण दी उम्मीद बड़ी घट है, जां कोई दिल दी बीमारी हो गई इह तां हुण बहुत ही औखा ऑपरेशन होवेगा। पर जिवें जिवें मैडिकल साइंस ने तरक्की कीती है, दिल दे ऑपरेशनां च वी आधुनिकता आ गई है। तुसीं इक नां लिया सी जी इंटरवेंशनल दा, ठीक है जी, इस तकनीक दे जरिए ऑपरेशन थोड़े सुखाले हो गए ने जी?
0: जी हाँ, अभी जो है ना बीमारियां थी जिनमें जो है ना रिस्क बहुत ज्यादा था, अगर उनको जो है खाली दवाइयों से ट्रीट करते थे तो उसमें जो है ना आगे चल के हार्ट फेलियर होने का रिस्क रहता था, रिकवरी नहीं होती थी। लेकिन नवी टेक्निक से, जिसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी या इंटरवेंशनल टेक्निक कहते हैं, जिसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट लगाते हैं, और नई टेक्निक आई है अभी जिसे, उसमें स्टेंट की जगह पे एक दवाई का बैलून होता है, ड्रग बैलून कहते हैं, उससे उसको अंदर से जहाँ पे ब्लॉकेज होते हैं उनको खोल देते हैं, और कुछ दिन के बाद में जो है नाड़ियां अंदर से हील हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिसमें कि स्टेंट की भी लोड नहीं पड़ती, कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिसमें तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज है। पहले ये सारे पेशेंट जो है ना सर्जरी के लिए जाते थे बाईपास, लेकिन अभी ये नवी टेक्निक से तो उसमें जहां पे ज्यादा ब्लॉकेज है कहीं पे स्टेंट लगाने की जरूरत है, कहीं पे दवाई के बैलून से, तो वो पेशेंट जिसमें तीनों नाड़ियां बंद हैं उनको भी ट्रीट किया जा सकता है इसी टेक्निक से
1: जी।
0: और इन पेशेंट में काफी रिजल्ट भी अच्छे है और उनकी लाइफ भी लगभग नॉर्मल सी हो जाती है। तो अगर टाइम से पेशेंट आ जाता है, अगर कहते हैं पहले 1 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आ जाता है और जो ब्लॉकेज है उसको खोल दिए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 98-99% पेशेंट को बचाया जा सकता है
1: जी। और ऑपरेशन तो बच जाता है ते नाल दी नाल हॉस्पिटल भी टाइम कट लगता है।
0: यस, इसमें अभी जो है ना बहुत कम टाइम लगता है। अब कोई भी एंजियोप्लास्टी या ये नवी इंटरवेंशनल टेक्निक से होती है, हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन से लगता है। कोई पेशेंट होता है जिसमें कि 3 दिन रुकना पड़े, नहीं तो ज्यादातर 1 दिन में ही छुट्टी हो जाती है, आ जाए और उसका ऑपरेशन किया और नेक्स्ट डे जो है ना चले गए और सब कुछ चलते फिरते। ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को व्हीलचेयर पे भेजो, हमेशा वैसे भेजो, हम तो जो भी पेशेंट होते हैं उसको डिस्चार्ज करते हैं, चला फिरा के भेजते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि तुसी अपना नॉर्मल रोजाना वॉकिंग शुरू कर दो, सैर शुरू कर दो
1: जी,
0: और बहुत जल्दी अपना जो है काम भी शुरू कर दो
1: जी। डॉक्टर, तुसी ब्लॉकेज दा नाम लिया, हुण साडे विचों बहुत सारे ये सोचते होंगे कि ब्लॉकेज क्यों हो जाती है, की कारण है जी इसका?
0: जी जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। ब्लॉकेज एक्चुअली शुरू होती है जो नाड़ियां होती है, नाड़ी की

0: सबसे अंदर की जो लाइनिंग होते हैं उसे कहते हैं एंडोथीलियम
1: जी।
0: ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइनिंग है। अगर जब तक कि ये नाड़ी जो है अंदर से एंडोथीलियम सही काम करती है तो ब्लॉकेज ना होता, लेकिन जब ये अंदर की लाइनिंग डैमेज होते हैं, जैसे पाइप है, पाइप में अगर अंदर से जो है ना अंदर से डैमेज होता है, रस्टिंग हो जाए, जम जाए, तो वहां पे फिर रस्ट जमने लगती है, अंदर से पाइप में बंद हो जाता है
1: जी जी।
0: तो उसी तरह ये जो पाइपें हैं जो दिल की नाड़ियां, अंदर से अगर वो एंडोथीलियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है
1: जी।
0: एक कोलेस्ट्रॉल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए जरूरी भी होता है, बहुत सारे जो है हार्मोन्स और बहुत सारी बॉडी फंक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, VLDL कहते हैं, या लाइपोप्रोटीन ए कहते हैं, इस तरह के ये जो कोलेस्ट्रॉल हैं ये शरीर के लिए नुकसानदेह करते हैं
1: जी।
0: तो वो कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे जो है ना वो अंदर से ब्लॉकेज करने लगता है। लेकिन होता क्या है कि अगर ब्लॉकेज जो है ना 50-60% से नीचे होता है तो पता नहीं चलता ऊपर से, लेकिन अचानक अगर वो ब्लॉकेज है वहां पर रप्चर करता है, जैसे होता है ना वोल्केनो है, जो अचानक जो है ना रप्चर किया है, उसमें से लावा निकलने लगा, उसी तरह ये रप्चर कर जाते हैं और वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, उससे हार्ट अटैक होता है
1: जी।
0: तो लगभग 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पहले कोई सिम्टम्स नहीं आया, पहले कोई तकलीफ नहीं थी, वो अचानक जो है ना वहां पे जो है ना खून जम जाता है, ब्लॉकेज आ गई और उससे अटैक हो जाता है
1: जी।
0: वो पेशेंट जो है ना ज्यादा रिस्क में होते हैं, और उसको अगर टाइम से नहीं दिया था, इसमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने का भी रिस्क रहता है। जैसे अभी आपने सुना होगा एक जो केस हुआ था राजू श्रीवास्तव, एक जो है कॉमेडियन था, वो जो है ना एक्सरसाइज करते करते ये हो गया, लेकिन मीडिया में बहुत सारे टाइम पे ये दिखाया गया कि उनको जो है ना वो तो बढ़िया जो है दौड़ रहे थे ट्रेडमिल पे, ट्रेडमिल की वजह से जो है ना उसमें हो गया। इसमें ट्रेडमिल का कोई दोष नहीं है, उनको डायबिटीज थी, जिनको डायबिटीज होती है उनको ब्लॉकेज होने का रिस्क ज्यादा होता है। ये पेशेंट जो होते हैं इनको अपना चेकअप कराना चाहिए और स्क्रीनिंग करके देखना चाहिए कि कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं। और ये पेशेंट हाई रिस्क होते हैं जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉल की रिकमेंडेड लेवल है उस पर रखना चाहिए और सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, आम लोगों के धारणा यह है कि असी बहुत ज्यादा वसा वाली चीजा, चर्बी वाली चीजा खादियां, ऑयली चीजा खादियां, तो वह साड़िया नाड़ा के जम जाता है, कि ये भी एक कारण बनता है कि वहम ही है।
0: नहीं, वहम नहीं है, इसमें जो है ना हमें सभी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो जो फैट है, अगर हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं ज्यादा, तो सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी जो है 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10% ज्यादा है तो वो सैचुरेटेड फैट जो है नाड़ियों में जमने का रिस्क ज्यादा होता है। उससे जो है ना जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, ट्राइग्लिसराइड है, TG जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो बढ़ जाता है
1: जी।
0: ये खराब होते हैं। ये इस तरह के जो वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट जो है ना वो नाड़ियों को डैमेज कर जाता है। तो ये सही बात है कि बहुत सारे जो मार्केट में जो सामान यूज करते हैं उसमें जो है वो अच्छा फैट नहीं यूज करते, तो वो उससे जो है खराब होने के। लेकिन अगर जैसे देसी घी खाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। ओलिव ऑयल है, जैतून का तेल जिसे कहते हैं, वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। तो जैसे कोकोनट ऑयल है वो भी खा सकते हैं, या सरसों का तेल है थोड़ी सी क्वांटिटी में, बट एज ए होल ज्यादा जो है फैट वाली चीजें नहीं खानी,
1: अवॉइड करनी चाहिए।
0: दूसरी चीज जो है वो शुगर है। शुगर जो है ना, जो प्लेन शुगर जिससे एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जैसे चीनी हो गई या बहुत सारी, या सिंपल जैसे कनक की रोटियां ही हो गई या चावल हो गए या बहुत सारी जो है मिठाइयां हो गई, इनसे अचानक ज्यादा अगर शुगर वो खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी में अलग सिस्टम होता है, जो हम खाते हैं वो डायरेक्ट उसी फॉर्म में नहीं जाता है शरीर में
1: जी।
0: वो पहले हजम होगा, डाइजेस्ट होगा, उसके छोटे छोटे जो है ना मॉलिक्यूल्स जो है वो बनेंगे, तो वो उसमें जो है ना फिर से अपटेक होता है
1: जी।
0: तो इसलिए जो है ना खाली फैट ही नहीं, शुगर का भी जो है कंट्रोल रखना चाहिए। शुगर अगर कंट्रोल होगी तो फिर जो है ना ये रिस्क घट जाता है।
1: डॉक्टर, पुराने बुजुर्ग कहते होंगे ना, असि तो घ्यो दे पीपे पीपे पी जाते सी, पर असी वर्जिश भी बहुत करते सी, असी कम भी बहुत करते सी, ते असी पचा लेंदे सी। अजोकी जिंदगी जिहड़ी आराम प्रस्त है और ये पचा नहीं हुंदियां चीजां, इस वजह करके असी बीमार हो जाने
0: जी। अल्टीमेटली हम खाते क्यों है, हमें एनर्जी चाहिए, हमें प्रोडक्शन चाहिए एनर्जी, तो वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है। तो अगर आपका उतना रिक्वायरमेंट है, आपका उतनी एक्सरसाइज लेवल है, तो आप ये थोड़ा सा ज्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट ही कम है, जो कि एक्सरसाइज करता ही नहीं है, तो वो जितना भी खाएगा तो वो बॉडी में स्टोर ही होगा,
1: स्टोर होना
0: जी,
1: बीमारी करना है
0: जी।

0: हार्ट सर्जरी की लोड कदों पैंदी है?
1: ओपन हार्ट सर्जरी की लोड अभी काफी घट गई है। ओपन हार्ट सर्जरी की लोड उसमें पड़ती है जहां पे इंटरवेंशनल टेक्निक से नहीं ठीक किया जा सकता
0: जी,
1: जहां पे नाड़ियों में जिनका एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती या स्टेंट नहीं लगा सकती या बैलूनिंग नहीं की जा सकती, उनको जो है ना बाईपास की लोड पड़ती है। या कुछ जो है जो वैल्व चेंज होते थे पहले, जैसे एओटिक वैल्व सुकड़ हो जाते थे या माइट्रल वैल्व उस लीक करने लगते थे, तो इन टेक्निक में अब ओपन हार्ट की सर्जरी पड़ती थी
0: जी।
1: लेकिन अभी नवी टेक्निक इसमें भी आ गई है जिससे कि ये वैल्व भी जो है ना बगैर ऑपरेशन के चेंज किया जा सकता है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी
0: जी,
1: ये तो है। अभी वो तो टेक्निक थोड़ी सी महंगी है लेकिन यूज होती है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी बहुत हाई रिस्क है, सर्जरी नहीं की जा सकती उम्र की वजह से या और दूसरी बीमारियों की वजह से, या हार्ट ही बहुत वीक हो गया, तो उन सब में इस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज होता है कि वो बगैर ऑपरेशन के कैथेटर टेक्निक से उसको वैल्व को चेंज कर देते हैं या वैल्व को बंद कर देते
0: जी।
1: हैं
0: जी। डॉक्टर साहब तुसी क्या सी कि दिल हाल तक असि नहीं बना सके
1: जी,
0: आर्टिफिशियल वाल्व बन जाता है,
1: वाल्व बन जाता है, वाल्व को चेंज किया जा सकता है अपने, जब तक अपना जो नेचुरल हार्ट है वो नेचुरल है
0: जी।
1: तो लेकिन जो वैल्व अगर जो खराब होते हैं तो वैल्व को जैसे सर्जरी से चेंज किया जाता था वो आप बगैर ऑपरेशन के भी।
0: चलो ये जुड़ती एक गल आती है, कई बार असि अखबारों च भी पढ़िया, टेलीविजन से भी देखिया कि फलां व्यक्ति का दिल बदल दिता गया, दिल सानू फलानी इन्नी दूरी ते मिलिया और उदे वास्ते एक वखरा रस्ता बनाया गया ताकि वेले सिर दिल पहुंच सके, ये दिल दा बदलना की हुंदा
1: जी? जी इसे ने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो फिर लाइलाज है जो उसमें जो है ना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, ना ही इंटरवेंशन से किया जा सकता है, ना ही कोई बाईपास सर्जरी से किया जा सकता है उन मरीजों में, या बच्चों की बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जो है नहीं ठीक की जा सकती, उनमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है। ये सक्सेसफुल है, काफी हमारे जो है ना देश में काफी होता है। ज्यादातर जो ऑपरेशन जो है वो साउथ में ज्यादा है, चेन्नई में काफी होते हैं, हैदराबाद में काफी होते हैं, मुंबई में भी होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, लेकिन उधर ज्यादा होते हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और कई मैं पेशेंट है मैंने देखे हैं और मेरे पेशेंट वापस आए हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी सक्सेसफुल है। बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि डोनर मिलना मुश्किल होता है
0: जी,
1: और कुछ कायदे कानून ऐसे होते हैं जिसको जो है डोनर नहीं मिल पाता
0: जी,
1: नहीं तो ये एक अच्छी टेक्निक है
0: जी,
1: जो
0: जी,
1: उन पेशेंट के लिए जिनके लिए कुछ नहीं किया जा
0: जी। डॉक्टर हर वरे 16 सितंबर वाले दिन असी मनाने जी इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी डे, ठीक है जी, ये सीधा सीधा दिल नाल जुड़ता है, दिल के इलाज नवीं तकनीकां दे नाल जुड़ता है, तो ये जी आधुनिक तकनीक है हुण दिल के वड्डे वड्डे ऑपरेशनों तो बचा के तुहानू छोटे छोटे ऑपरेशनों के जरिए तंदुरुस्त कर दिंदी है जी।
1: बिल्कुल सही कहा, अभी जो टेक्निक है जिससे कि जियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं या अंदर से बैलूनिंग करते हैं या वैल्व को चेंज करते हैं या फिर वैल में रिपेयर करते हैं, ये सारी टेक्निक इंटरवेंशनल टेक्निक कहलाती हैं। इंटरवेंशन मींस ये मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें कि एक पैर की या हाथ की नाड़ी से जो है अंदर से पतला सा कैथेटर होता है उसके थ्रू जाके ये सब किया जाता है। ज़्यादातर इस तरह के प्रोसीजर्स हैं वो होश में किए जाते हैं, कोई बेहोशी नहीं करनी पड़ती है, सिंपल सा एक लोकल इंजेक्शन लगा के किया जा सकता है। ज्यादातर पेशेंट जो है ना टॉलरेट करता है, आराम से कंफर्टेबल लेटा रहता है और इलाज हो जाता है और बढ़िया इलाज हो जाता है। तो वही चीजें जो कि कुछ चीजें जो दवा से नहीं ठीक की जा सकती उनका इलाज इंटरवेंशनल टेक्निक से किया जाता है,
0: यानी कि ये दवा वांगू काम करते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन दवा भी साथ में जरूरी होती है, तो दवा प्लस इंटरवेंशन ये दोनों ही चीजें जरूरी है। दवा तो चाहिए
0: जी जी। डॉक्टर चलते चलते साडे सुनन वालियां नूं की कहोगे, खास तौर ते उहनां नूं जिहड़े चुप चुप रहिंदे ने, बोलदे नहीं, कि उहनां नूं खतरा ज्यादा तो नहीं हो जाती दिल दीयां बीमारियां दा?
1: देखिए ये जो है ना चुप रहना, और ये एक तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो खुश रहिए, और खुश रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर खुश रहते हैं तो बॉडी में बहुत सारे अच्छे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अच्छे जो है फीलिंग अच्छी होती है। दूसरी चीज जो है ना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज हर बंदे को ही करना चाहिए, हमने लिए कम से कम आधा से एक घंटा जरूर निकालना चाहिए, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज हो वो करें, और 6 से 7 घंटा सोना भी जरूरी है
0: जी।
1: और खाने में हर तरह का खाना खा सकते हैं कंट्रोल क्वांटिटी में
0: जी,
1: तो जो अच्छा खाना है वो ज्यादा खाएं, जो खराब है जो समटाइम होता है कि बच्चे होते हैं वो फास्ट फूड, या किसी को बहुत से लोगों को भी फास्ट फूड पसंद है वो कभी कभी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत खाने में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए
0: जी।
1: तो अच्छी आदतें डाले और कुछ हैबिट्स जो है ना जैसे एक्सरसाइज करने की, टाइम से सोने की, अच्छी चीजें खाने की और खुश रहने की
0: जी,
1: ये अच्छी आदतें जरूर रखें
0: जी। इसलिए तो कहते हैं दिल खोल लेते अगर यारों के साथ, ना खोलना पड़ता आज औजारों के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अगर आप

0: आपका जो है स्ट्रेसफुल लाइफ से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया या बहुत सी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होती हैं, वो ज्यादातर उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, जो सोते ही नहीं है, ठीक है, हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो हर वक्त टेंशन मत रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसका बिल्कुल सांझी करो, और जो है जो भी आपके कुल डॉक्टर है, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है या और दूसरी बीमारियां हैं तो उसके साथ में जरूर साझा करो और जाके दिखाओ, एक बार चेक जरूर कराना चाहिए, जो आपका डॉक्टर कहता है उस पर विश्वास भी रखना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: और उसको फॉलो करना चाहिए, तो जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक होगी।
1: जी जी, सो डॉक्टर अनवर तुसी साडे स्टूडियो चाहे बहुत ही वधिया तरीके नाल दिल दीआं वख-वख बीमारियां दा किवें आधुनिक तरीकियां नाल इलाज कीता जा सकदा उस दे बारे खोल के विस्तार पूर्वक जानकारी दित्ती, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: थैंक यू, सानू भी बहुत खुशी हुई।
2: सो जी, जिहड़ा अज दा ए दिन खास मना रहे ना, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस, इहदे उपलक्ष दे विच डॉक्टर अनवर खान होना ने बहुत ही सोहणे तरीके नाल दस्सिया कि घबराण दी लोड़ नहीं है, जे दिल दी कोई बीमारी हो भी गई है तो डॉक्टर कोल जाके तुसी इलाज जिहड़ा करवा सकते हो।
3: और दूजा जिहड़ी मेजर टिप दे गए ने ओह दे गए ने कि खुश रहो
2: जी,
3: जिंदगी नू जियो, स्ट्रेस ना लो।
2: बिल्कुल जी, ते फिर असी भी स्ट्रेस नहीं लेना, ते असी इक गीत सुनिए।
3: बिल्कुल जी
2: जी,

नेशनल साइंस एकेडमी, अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा सोसाइटी, विश्व मौसम विज्ञान संस्था, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मौसम विज्ञान अते वायुमंडल फिजिक्स, इन्हां वर्गी कई संस्थावां दे नाल जुड़े हुए सन। 1987 विच उन्हां नूं इंसा केयर रमनाथन मैडल भी मिलिया सी। 1976 विच भारतीय मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के अहुदे तो अन्ना मनी जी सेवा मुक्त हुए सन। 1994 विच

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट।

0: करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है साडे अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: फौजी वीरों जय हिंद। मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ हिंदी फिल्मों के गीतों नाल सजिया यह गुलदस्ता। तो फिर इस गुलदस्ते विच्चों पहला गीत है जी फिल्म सरगम का। ज़्यादा देर नहीं करते तो हाजिर करते हाँ तुहाडे लई लता मंगेशकर ते रफी जी की आवाज़ विच प्रोग्राम का है पहला गीत।
1: दफली वाले, दफली बजा।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है फिल्म असली नकली दा। इस गीत नू अपनी सुरीली आवाज नाल सजाया है मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर ने।

कैसा जादू सोना सारी मन की ये माया है। अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे

क्यों हम जावे मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। हम तो जोगी राम के रोगी, धूनी अलग रमाएंगे।

फौजी हीरो ए प्रोग्राम जारी रहेगा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फिलहाल तुसी सुनोगे हुण तो कुछ देर बाद 1:40 ते पंजाबी खबरां ते उस तो बाद साडे दिल्ली केंद्र तो उर्दू च खबरां 1:50 ते।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान UPI लैन देन ते कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दरां विच कटौती ते छोट की बजाय सरकार नूं टैक्स संबंधी तजवीज़ां च देश नूं पहलां रखना चाहिए है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो भूटान के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। धरती ते जीवन की रक्षा विच ओजोन परत की अहमियत बारे जागरूकता पैदा करने लई अज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियों विच पढ़ रहे 10,000 विद्यार्थियों लई होस्टल बनाने का फैसला किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान UPI लैन देन ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों लिए 0 मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचे अधीन आने वाले लैन देन और व्यापारियों 2,000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय अनुसार इस के नतीजे वजो व्यक्ति और व्यापारी विचकार होने वाले कुल लैन देन विचों लगभग 96% लैन देन प्रभावित नहीं होगा। MDR सिर्फ 2,000 रुपए तो वध मुल ते निर्धारित व्यापारिक लैण देण ते ही लागू होएगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि MDR ना तो कोई टैक्स है और ना ही सरकार या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI वालों लाया गया कोई चार्ज। इस नूं UPI के संचालन और निरंतर विस्थार विच सहायता लई बैंकां ते भुगतान एप्लीकेशन मुहैया करवाउण वालियां विचकार वंडिया जांदा है। NPCI ने कहा कि खपतकारां ਲਈ UPI ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ MDR ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दरां विच कटौती ते छोट की बजाय सरकार नूं टैक्स संबंधी तजवीज़ां विच देश नूं पहलां रखना चाहिए है। वह अज बेंगलुरु विच इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन वालों आयोजित 2 दिन न्यू एज टैक्सेशन कानफ्रेंस के उद्घाटन मौके बोल रहे सन। मंत्री ने खोजकर्ताओं और थिंक टैंक्स नूं सद्दा दिता कि वह सुतंत्र टैक्स नीति खोज नूं जनतक चर्चा का एक नियमित हिस्सा बनाउण जिस की जांच हो सके अते सुधार किए जा सकन। अपने मंत्रालय वालों बजट तो पहले सलाह मशवरे बारे बोलदे श्रीमती सीतारमन ने

0: जहां उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एकोमोडेशन की चिंता की जाएगी। ये हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी बनाए जाएंगे और बॉयज के लिए भी। यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी आकर के अपना हॉस्टल फैसिलिटी ले सके।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 मुहिम कल तो पूरे देश में शुरू हो रही है। यह मुहिम 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उत्तरी रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने नवी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन ते आनंद विहार रेलवे स्टेशन ते डिजिटल लॉकर सहूलत शुरू की है। व्यापारिक पहलकदमी वजों शुरू की गई यह सहूलत मुसाफरों को समान रखने एक सुरक्षित सुविधाजनक परेशानी मुक्त विकल्प प्रदान करती है। यह लॉकर एक डिजिटल अते ओटीपी आधारित पहुंच प्रणाली की वरतों करते हैं, जिस नाल मुसाफर अपने इंतजार समय दौरान अते स्टेशन तो बाहर जाते समय भारी समान नाल ले जाने तो बिना अपने समान सुरक्षित ढंग नाल रख सकता है अते प्राप्त कर सकता है। मुसाफरां दीआं लोड़ां नूं पूरा करन लई चारे रेलवे स्टेशनां ते वख-वख आकार दे लॉकर प्रदान कीते गए ने। नवीं दिल्ली अते हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनां ते डिजिटल लॉकर सहूलत चालू कर दित्ती गई है। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान यूपीआई लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दरां विच कटौती ते छोट की बजाय सरकार नूं टैक्स संबंधी तजवीज़ां च देश नूं पहलां रखना चाहिए है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तो भूटान के दो रोज़ा सरकारी दौरे ते होणगे। धरती ते जीवन की रक्षा विच ओजोन परत की अहमियत नूं जागरूक करने लई अज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। ते दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे 10,000 विद्यार्थियों लई होस्टल बनाने का फैसला किया है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जामे बहस मुबासे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैन अलाक्वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ रूस के तीन दिन के दौरे पर गए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत को टैक्स से मुतालिक पेश की जाने वाली तजावीज में टैक्स की शरह में कमी, छूट या रियायत हासिल करने से बढ़कर मुल्क के मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वो आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन के जेर एहतमाम नए दौर की टैक्सकारी के मौजू पर मुनक्कदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रही थी। वजीर खजाना ने माहरीन तालीम, मुहक्किकीन और थिंक टैंक से अपील की कि वो टैक्स पॉलिसी के बारे में आजादाना तहकीक को अवामी बहस का बाकायदा हिस्सा बनाएं, ताकि तहकीक का जायजा लिया जा सके, इस पर सवालात उठाए जा सकें और इसे मजीद बेहतर बनाया जा सके। अपनी वजारत की जानिब से बजट से पहले की जाने वाली मुशावरत का जिक्र करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुशावरती सरगर्मियों में ये बड़े सवालात भी उठाए जाने चाहिए कि विकसित भारत 2047 की जानिब बढ़ते हुए आइंदा दो दहाइयों के लिए भारत का टैक्स निज़ाम कैसा होना चाहिए। उन्होंने टैक्स से मुतालिक बेहतर तहकीक की जरूरत पर जोर दिया, जो तमाम पहलुओं का जायजा ले, इसके असरात की पैमाइश करे, मुख्तलिफ मफादात के दरमियान समझौते को तस्लीम करे और हर मुमकिना सरकारी आमदनी के नुकसान के बदले काबिले अमल मुतबादिल तजावीज पेश करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की तहकीक हुकूमत को मुख्तलिफ मुतबादिलों में से मुनासिब इंतखाब करने में मदद देगी, जिसके नतीजे में एक बेहतर टैक्स पॉलिसी तश्कील दी जा सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांच

में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस इश्तराक व तआवुन को फरोग देने, जिद्दत तराजी को रफ्तार फराहम करने, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाने, सरमायाकारी को रागिब करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार महारत को फरोग देने की खातिर आलमी सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको सिस्टम को यकजा करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अलाकवामी कंपनियां और 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनकाद मुश्तरका तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और SEMI कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबासे और कलीदी अहमियत के हामिल इजलास मुनक्किद होंगे, जिसमें सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी समेत सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निज़ाम के अहम शोबों और उभरते रुझानात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैन अलाकवामी कंपनियों को शराकतदारी, सरमायाकारी के मौके और टेक्नोलॉजी के इश्तराक के इम्कानात तलाश करने के लिए अहम मौका फराहम करेगा। इसके अलावा ये एक एतमाद आलमी सेमी कंडक्टर शराकतदार के तौर पर भारत की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करेगा। 22वें भारत अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क युद्ध अभ्यास कल उत्तराखंड के ओली इलाके में शुरू हुई। मश्क की इफ्तिताही तकरीब ओली के गैर मुल्की तरबियती मरकज पर मुनक्किद हुई। ये मश्क उत्तराखंड में ओली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ की जा रही है। इस मश्क का मकसद दोतरफा दिफाई शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के साथ साथ दोनों फौजों के दरमियान मिलकर काम करने के अमल को फरोग देना और उभरते हुए चैलेंजों से निमटना है। इस मश्क का मकसद यह भी है कि पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में मरबूत जंगी ग्रुपों को तैनात करने के लिए दोनों फौजों की मुश्तरका फौजी सलाहियत में इजाफा किया जाए, जिसमें इन्फेंट्री के गलबे वाली कार्रवाइयों पर जोर दिया जाएगा। वजारत दिफा ने बताया कि इससे दोनों फौजों के मिलकर काम करने की सलाहियत में इजाफा होगा। कार्रवाई के बेहतरीन तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकफियत हासिल होगी और मुश्तरका मनसूबाबंदी और इसके अमल दरामद में मजबूती आएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को आज वजारत खारजा में तलब किया गया और समंदर में पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर सख्त एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में भारतीय बहरिया के एक यूनिट के साथ टकराव हुआ था। एक बयान में वजारत ने कहा कि यह वाकया बैन अलाकवामी आबी हदूद में पेश आया था, अगरचे इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये फौजी मशकों और फौजियों की नकलो हरकत के बारे में पेशगी नोटिस से मुतालिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान अप्रैल 1991 के चौथे के मनाफी था। वजारत खारजा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर से यह कह दिया है कि मुतालिका पाकिस्तानी हुकाम को इस बात से मुतला कर दें कि सभी फौजी यूनिटों को पूरी एहतियात बरतने और दोनों मुल्कों के दरमियान मुतालिका समझौतों की दफ़ात का एहतराम करने की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया पेश न आए। उधर इस्लामाबाद में भारत के नाजिमुल उमूर को भी यह हिदायत दी गई है कि वह पाकिस्तान की वजारत खारजा को इसी तरह के एहतजाज से मुतला करें। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इशारिया 2025 के मुताबिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इख्तियार करने के एतबार से रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में दिल्ली को सरफहरिस्त रखा गया है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में ये इशारिया जारी किया। इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क और ज़ैली कौमी सतह पर ई मोबिलिटी के नफाज से मुतालिक नतीजों दोनों को उजागर किया गया। दिल्ली के बाद उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा शामिल हैं। ये इस तरह का दूसरा इशारिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के वजीर खारजा लियोन पोदुलगेल के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। वो भूटान के बादशाह और भूटान के वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि दौरा भारत और भूटान के दरमियान आला सतही तबादलों की रवायत के मुताबिक है। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ आज से इस महीने की 18 तारीख तक रूस के सरकारी दौरे पर हैं। तीन रोजा दौरे के दौरान जनरल सेठ पेशावराना फौजी ताउन और तरबियत समेत बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर रूस की बर्री अफवाज के कमांडर इन चीफ के साथ बातचीत करेंगे। उन्हें बाजाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और वो मॉस्को में टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर शहीद सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने कल

0: भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैन अलाक्वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। नीति आयोग ने 2025 के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इशारे का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इख्तियार करने में दिल्ली की कारकर्दगी सबसे शानदार रही, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर है। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नज़दीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया है। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: ਵਈ ਮਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
2: ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
5: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
2: ਐਚਆਈਵੀ
5: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
6: ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਬ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਟਾਈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਦਲ। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
5: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
5: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल, संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल, संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल, संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
8: फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है। फौजी वीरो, आहुन सुनदिया एक बहुत ही रूहानी ते सुरीला गजलनुमा गीत, जिस विच लता मंगेशकर अते सुरेश वाडकर दी आवाज दा जादू है। फिल्म दा नाम है धनवान।

0: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਧੀ ਚੁਗਨੂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੈ ਹਿੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ
1: ਨਮਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਕਾ ਕਰ ਸੇ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀਓ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਕੋ ਸਰਵੋਪਰੀ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਆਹਵਾਨ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया और हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान अब समाचार विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया
2: The question should not only be
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके
1: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से तीन दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर

0: @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
5: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है।

0: दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवा ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।

0: अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
2: तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
3: एचआईवी
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
1: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आ हुण सुनदे हां प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी नेता सिंह परवाना ते उहनां दे साथियां दे गाए लोक गीतां दा आनंद माणोगे। शुरुआत करदे हां उहनां दी आवाज़ विच गाई जुगनी।

ਨੱਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਰਹੇ ਮਿਆਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ।

प्रोग्राम चलते चलते सुनदे उन्हां दी आवाज़ विच कलम बुल्ले शाह, नेता सिंह परवाना ते उन्हां दे साथियां दा गाया।

नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लेके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तेजिंदर सिंह हाजिर हाँ। दोस्तों, इस प्रोग्राम विच असीं तुहाडे वल्लों भेजियां जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं शामिल करदे होए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करदे हाँ। दोस्तों, अज दी भज दौड़ ते तनाव भरी जिंदगी च हर कोई खिजिया खिजिया रहिंदा है ते हमेशा खिजे ते गुस्से च रहना जिथे तुहाडी दोस्ती ते रिश्तेदारी च विगाड़ पाउंदा है उत्थे हसना ते चंगा बोलना तुहाडे दोस्तां ते रिश्तेदारां दी गिनती च वाधा करदा है। दोस्तों, जेकर तुसीं ध्यान दिओगे तां इक गल सामने आवेगी कि हसण ते चंगा बोलन नाल कोई मुल नहीं लगदा, पर इस दे फायदे बहुत ने। इसलिए हमेशा हाजिर रहो क्योंकि मुल ना लगदा हसने दा। दोस्तों, प्रोग्राम दी पहली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजण वाले ने गगड़ साहिर हाजीपुर तों, केहर सिंह मोण, चित्राम, गुरमीत, सदेश कुमार कुलियावाला जी, ते इस दे नाल ही कुलदीप सिंह संधू, गुरविंदर सिंह संधू, यादविंदर सिंह या माफ करना यादवीर सिंह संधू, डब वाली हरियाणा तो जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय अनिल, मीना बकोलिया ते मीनू बकोलिया, चौंक बत्तियां वाला पिंड माधोपुर जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो बलविंदर बिल्ला माधोपुरी, राज कौर, ज्योति गोल्डी, राम लाल खरोड़ा, बब्बू टिवाणा अते सारा माधोपुरी लाणा, पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो सोन लाल राठी, ओम प्रकाश लाल राठी, शगन राठी, लवकुश वर्मा, हनु राठी, अमन गोड़, कंचन बीरट, कुलदीप ढींगड़ा।

दोस्तों तुसीं सुन रहे सी फिल्म दो लच्छियां। फिल्म दे विच्चों शमशेद बेगम वल्लों गाया गया खूबसूरत गीत भावें बोल ते भावें ना बोल। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजने वाले ने मुख्तियार सिंह वरवाल ते होर बहुत सारे साथी। इन्हां दे पिंड बुरज हनुमानगढ़ नेड़े बस स्टैंड जिला फाजिलका तों अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते पूरा वर्मा परिवार। पिंड रायपुर डब्बा पंजाब तो फौजी मक्खण सिंह, बूटा, बल्ली, शनी अते बाकी पूरा परिवार। पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता। मुक्तसर तो बब्बू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु ते भुपिंदर। दोस्तों भावें सौण दा महीना खत्म हो गया है पर फिर भी साढ़े स्रोतियां दा साउंड दी झड़ी वाले गीत ते नचण नूं बहुत जी कर रहा है अते असी अपने रब वर्गे स्रोतियां दी इच्छा भी जरूर पूरी करांगे। इस गीत नूं सुणन दी जिहड़ी फरमाइश सीगी नाम दस्से हुए स्रोतियां वल्लों कीती गई सी ते आपां प्रोग्राम दा अगला गीत भी यही सुणदे हां।

दोस्तों तुसी सुन रहे सी चांदी राम ते शांति देवी दी खूबसूरत आवाज़ विच गाया होया गीत मित्रा दा छल्ला। दोस्तों उंज तां हसना सेहत लई बहुत चंगा हुंदा है, पर जेकर कुड़ियां ज़्यादा हसन तां लोकी की दा की समझ लैंदे ने। इसे हासे नूं लै के कई लिखण वाले ने बहुत सोहणे गीत लिखे, जिन्हां चों एक गीत सुनण दी फरमाइश करन वाले ने बाड़ियां कला तों हुशियारपुर तों बूटा राम हांडा, विनय उमंग ते नीरज हांडा, इसी तरह सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र तो नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े ते आकाश कुमार, इसी तरह पिंड तंगोरी जिला मोहाली पंजाब तो गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर ते सहजप्रीत कौर, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाणा तो विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, बीकेपुरी कैलाशपुरी अनीता ममता मेघा ते पूजापुरी, गगन कपूर गुंजन कपूर ते लालसा कपूर, रामा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक, इसी तरह हरीशपुरी सतीशपुरी राकेशपुरी विनोदपुरी पालीपुरी डीसीपुरी अरनपुरी ते नेहापुरी एकतापुरी शम्मी बोधी सुनीलपुरी वीकेपुरी ते आरएसपुरी, इसी तरह पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता राणी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया ते बेबी आरजू जाजोरिया। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।

दोस्तों तुसीं सुन रहे सी मुहम्मद रफी की आवाज़ विच खूबसूरत गीत चिट्टे दंद हसनो नहीं रहिंदे। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, जसवंत जसवंत कौर। इसी तरह राज मिस्त्री पिंड माहूआणा बोदला ढाणी नेड़े थाणा अरनी वाला तो सुरिंदर कौर बूक, बलविंदर कौर बूक ते रीना बाई। गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवांशहर तो सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिक्षा संधु ते होरना दे परिवारक मैंबर। मुहम्मदपुर सोत्र ढाणी रतिया तो जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, शल्या राणी, गुरछिंदर बूक, बब्बू बूक, कुलदीप बूक, कीरत बूक, भूषण खेड़ा, जशन बूक ते होर पूरा बूक परिवार। इस तरह मंडी हरजी राम मलोट तो महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जशन गर्ग, विनोद गर्ग ते होर परिवारक मैंबर। मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज। दोस्तों इन्हां सारिआं दी फरमाइश ते सुणदे हां जी प्रोग्राम दा अगला गीत।

दोस्तों तुसी सुन रहे सी गुरदास मान दी आवाज़ विच खूबसूरत गीत तेरे मेरे प्यार दे तारे गवाने। प्रोग्राम दी अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजण वाले ने फ्रेंड्स कलोनी करनाल तों गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, बग्गा पुराणा तों सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा, तेग फतेह सिंह रखरा ते जसगुण रखरा, पिंड कड़ियाणा जिला फाजिलका तों भोला सिंह सुहाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, रितमन ज्योत, गुरतेश्वर, अश्मिन, रुबाब, फौजी हकीक सिंह पट्टी वाले, ट्रैक्टर मकैनिक अमृतपाल सिंह, पिंड कुबाया तहसील जलालाबाद जिला फाजिलका तो पप्पू मुनीम, अमरोबाई, राजू फौजी, हरप्रीत कौर, बलजीत कौर, हरमेश, गुरनूर, प्रणीत परी, नवदीप, बबलू माणो ते होरना दे परिवारक मैंबर, पिंड खाने की ढा मलोट तो शमशेर सिंह कौलधर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह ते मनराज, पिंड पंजोनिया जिला जालोन यूपी तो सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। दोस्तों इन्हां सारे दी फरमाइश ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान यूपीआई लेन देन ते कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि दरां विच कटौती अते छोट दी बजाय सरकार नूं टैक्स संबंधी तजवीज़ां च देश नूं पहला रखना चाहिदा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तो भूटान दे दो रोजा सरकारी दौरे ते ने। धरती उत्ते जीवन की रक्षा विच ओजोन परत की अहमियत बारे जागरूकता पैदा करने लई अज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 मुहिम कल तो पूरे देश विच शुरू हो गई है। यह मुहिम 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पंजाब दे जल सप्लाई अते सैनिटेशन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने सूबे विच स्वच्छता ही सेवा मुहिम लई कीतियां जा रही तैयारियां दा जायजा लिया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब दे 80% खेतरां तक नहरी पानी पहुंच चुका है अते इस नूं 100% तक लैके जाण दा टीचा है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले सीजन दौरान सूबे तो बाहरों आने वाले झोने नूं विक्री लई किसी भी मंडी विच दाखल नहीं होण दित्ता जाएगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दे कॉलेजां अते यूनिवर्सिटियां विच पढ़ रहे 10,000 विद्यार्थियों लई होस्टल बनाउण दा फैसला किया है। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक गीत नाल जिसनों आवाज़ दिती है आशा भोसले ने।

मेरे माधव जी सतसंगत मिले सुतरिया। इस शब्द का गायन किया भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। गुरमत विच मानस जन्म का प्रयोजन भाव मकसद निर्धारित किया होया है, वह है अपना मूल पछानना, भाव उस प्रभु की जोत विच अभेद होना, उस प्रभु

करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। इस पावन रचना का गायन किया भाई जगतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने

कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

0: पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान के बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 854 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज और डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 6:05 हो रहे हैं। चलो हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

शाम 6:03 ते पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज कम दियां गल्लां मेरी खेती फलां दी पौष्टिक बगीची बारे जानकारी लवांगे डॉक्टर रचना अरोड़ा होना कोलों। शाम 7:40 ते समा रहेगा समाचार समीख्या दा। 7:45 ते पंजाबी वार्ता च वार्ता सुनोगे पंजाबी सत दा निकास ते विकास। वार्ताकार होणगे डॉक्टर सुखविंदर सिंह ढिल्लों। रात 8 साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे जापान च हो रही एशियन खेडा ते आधारित विशेष प्रोग्राम चेयर फॉर भारत। रात 8:03 ते पेश करांगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 10:02 ते समा रहेगा प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश दा। इह सन साडे अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। आओ हुण सुणदे हां देशभगती समूह गान।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। सब तो पहला अज दियां खास खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपे लैण देण ते हुण नहीं लगेगा कोई चार्ज। युद्ध नशिया विरुद्ध ते नशा मुक्ति मुहिम तहत मलोट विखे करवाया गया राज पद्धरी समागम। इस मौके डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि नशिया के खात्मे लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग जरूरी। सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि सरकारी रिंदरा हस्पताल विखे स्थापित किया जा रहा है 300 बैड का ट्रोमा सेंटर। मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने दसिया कि खेडां वतन पंजाब दियां विच पहली बार शामिल की गई टैनिस बॉल टिकट ते मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच भारी मीह पैण की पेशीनगुन की। हुण खबरां विस्थार दे नाल। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपीआई लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होवे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचे तहत आने वाले लैण देण ते व्यापारियों को 2000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान की मुफ्त रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चार्ज सिर्फ 2000 रुपए तो वे व्यक्ति तो व्यापारी लैण देण ते ही लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई ऐप प्रदाता प्लेटफार्म फीस या लुकमें खर्चे नहीं वसूले जाएंगे। मंत्रालय ने बैंकों को हदायत की है कि वह यह यकीनी बनाने कि व्यापारी यूपीआई भुगतानों लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR का बोझ गाहकों से ना पाउण। 2000 रुपए तो वे व्यक्ति तो व्यक्ति लैण देण से 0.4% मामूली MDR दर लागू होगी, जबकि 75,000 रुपए और इस तों वध दे उच्च मुल वाले लैण देण लई MDR की वध तों वध हद 300 रुपए प्रति लैण देण ते तय की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 साल पूरे कर रही है। इस योजना तहत 30 लाख लाभपात्रियों को रजिस्टर करने का दायरा टीचा पूरा कर लिया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 शुरू की गई सी। इस योजना का उद्देश्य 18 पछाणे गए कित्यां विचों लगे रवायती कारीगरां अते कारीगरां नूं व्यापक सहायता प्रदान करना है। इस योजना

0: जी
1: ये तो हो गया गीत ते
0: जी
1: तुहानू हुण जानकारी भी दे दीए कि खेतीबाड़ी जिहड़ी साडी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना
0: हाँ जी
1: उत्थे मेले है
0: ठीक है जी
1: मेला जी 18 ते 19 सितंबर

0: कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। 4 सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग, कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास एक सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी हलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
0: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल

0: का क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-time वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आई मीन पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पुनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
2: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2-3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनके टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा।
2: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही। सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है, इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पुनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 केजी में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी, पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 केजी लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 केजी एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी

0: कहा जाता है। और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 केजी में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफी अच्छा। 68 में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है
1: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारीवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे हैं शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर, उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्य प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगझू एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे, अभिषेक इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट

0: है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज्यादा मेडल लाए, ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहां से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स है जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहां से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुंच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एले क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था और साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है लेकिन वो काफी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहां पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है, तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है आर्चरी के, क्योंकि 2-3 है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफी बेहतर हुआ है, काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो बहुत फायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है, हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट सब कुछ बहुत अच्छा

0: चल रहा है, और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से हमने काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
2: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहां पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज्यादा होने वाला है। पर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूंगा, 54 केजी में वो काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैंपियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहां पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहां पे। और वैसे ही प्रिया घनगा से, ये नए टैलेंट है लेकिन इन्होंने भी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का, उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के 1 से 1 उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
2: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा आ रहा है और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का जब गोल्ड मेडल जीता, और जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूं तो यहां पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा, 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए, इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
0: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 केजी में, पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है, और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है, तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है, लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम, वेलवन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेन्स टीम, अभय सिंह मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
2: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल, वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं

0: लाइक आर्चरी स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं है। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कंपटीशन काफ़ी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है।
1: बिल्कुल।
2: तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो, और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
1: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एले ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एले ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें अकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का अकोमोडेशन दिया ताकि वो एक्मेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं, तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में है। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगजोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो जी, इस टाइम साडी कड़ी ते 8:30 हो रहे हैं, वेला हो गया है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा।

0: ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਲੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਇਸੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਜੀ ਆਰ ਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ 'ਤੇ 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया उन्होंने कौशल विकास नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा नवाचार को गति विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है हमारे संवाददाता ने बताया है

0: इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
1: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3,00,000 रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
3: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
4: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है।

0: शर्मा ने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
1: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
2: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान पूरा। न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है यूपीआई। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की कीमत कौन चुका रहा है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया एमडीआर फ्रेमवर्क आया है उसके 5 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया यूपीआई भुगतान पूरी तरह से एमडीआर फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी 2,000 रुपए तक के भुगतान पर एमडीआर नहीं लगेगा। 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट 1,00,000 रुपए हर महीने है, उनके लिए 0 एमडीआर व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजेक्शन्स पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ एमडीआर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ये हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पहलू जो एमडीआर के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एमडीआर, जिसकी बहुत चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों में है, ये है क्या और यूपीआई की इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
3: देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि यूपीआई आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इसे चलाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है ना केवल वो स्पीड के साथ हो, एक्यूरेट हो, लेकिन वो सुरक्षित भी हो। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है और हमें इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, संबंधित कोई समस्याएं ना हो, फ्रॉड ना हो। तो ये कस्टमर्स प्रोटेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर्स प्रोटेक्शन, के लिए उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मर्चेंट उसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा विश्व में मैं समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मर्चेंट्स जुड़े होंगे और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं इतने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्ट

0: की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है करते हैं, उनको इसका कोई उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार है। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, ताकि क्योंकि सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना की गति है और पारदर्शिता। तो मैं समझता हूँ उसमें जो आपकी जो प्लेयर्स इसमें हैं, उसमें आपका टीपीएपी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है। फिर इसमें एक पीएसपी बैंक है जो कि वो दरवाजा खुलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी एनपीसीआई के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का, और मर्चेंट का बैंक है जहां पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं देगा, मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें एमडीआर लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक्स, पीएसपी बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, इस सब में ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए, मशीनरी में, आईटी में और पैसे लगाए।
1: जी विकास जी, जब हम एमडीआर की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि एमडीआर का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, चूंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस एमडीआर फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि एमडीआर और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
0: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम आईटी में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो, जो एनेबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो एमडीआर से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे, ये एमडीआर के जो भी पैसे इसमें मार्जिन से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग यूपीआई प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, ज़रा 3-4 प्लेयर्स जो उसमें हैं। तो अब देखिए, जनधन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है 56 करोड़ लोग आ गए हैं, दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गाँव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी अनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें यूपीआई को अपनाएं। तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है एक कि इसको जीरो जो एमडीआर रेट है और कुछ दिन चलता है, और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है, उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये यूपीआई के ऊपर नहीं लग रहा है
1: जी।
0: कोई शुल्क, ये ट्रांजेक्शन जो होगा मार्चेंट, उसमें भी 1 लाख तक ये छोटे काश्तकार, छोटे एमडीआर वाले हैं, उनको सब्जी वाला है, चाय वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2, वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM, तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से किसी महीने में ज्यादा हो गया, अगले महीने कम हो गया, पिछले 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा, जैसे ही बना गया है 0.04% और वो 300 रुपये की सीमा है। तो ये छोटा सा रकम है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि इसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सुविधा है। अब मैं समझता हूँ छुट्टे की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है, और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: सूरज जी, कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि एमडीआर क्या है और नए एमडीआर फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब यूपीआई लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में एमडीआर की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है, सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
2: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए

0: इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, किसी साल 2100, किसी को 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदी हो गए, और जो इसकी सुविधा थी आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट्स यूपीआई के जरिए जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट ओटीपी के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने क्यूआर कोड डाला और पेमेंट हो गया ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और P2P पर्सन टू पर्सन आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो। सिर्फ वहां लगाया गया है जहां MDR को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहां सालों से दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1% कहीं 1.5%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पीओ ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे पर हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेंजी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास UPI है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता है ये। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजेक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजेक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है, अभी जिस लेवल पर है तो उसमें पर ट्रांजेक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है, अगर 24,000 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे, कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन हो 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजेक्शन करें वो 300 ही रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसको रीलुक किया जाएगा, और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं, मर्चेंट से छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2%, 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा, तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
1: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि MDR का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ग्राहक से MDR नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो MDR का भुगतान करेगा, इस अंतर को हम कैसे समझें?
2: सर कोहली साहब से मैं सहमत हूँ, यदि एक ही बात है कि इसमें जो हाईवेज की आपने एग्जांपल दिया वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा, PSB बैंक, PPAP और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात, तो कहा सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, कोई भी प्रोसेस हम करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में MDR मर्चेंट साइड चार्ज है, तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए, और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है कि इसमें जो मर्चेंट्स है ये इसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से

0: दो नुकसान हो सकता है, अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू, नेहरू प्लेस का किसी ने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, यूपीआई है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स देंगे जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहां केवल ₹5 में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल ₹5 चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा, जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे MDR के लिए, हो सकता है उसको और बढ़ा भी जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाएगा प्रणाली कैसे चल रहा है, ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर ATM में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी इस बात को। और इसके हो सकता है उसके कोई हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा, जैसे उन्होंने कहा ना इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे। तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये एक ऐसा ना इसे फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
1: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, जो सरकार कह रही है कि दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो 0.4% MDR वहन करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब दुकानदार पर 0.4% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वो कैश पेमेंट एक बार फिर प्रचलन में आएगा और दुकानदार कह सकता है कि जी आप हमें कैश पेमेंट करिए क्योंकि मुझे तो 0.4% वहन करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं?
2: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरेक्शंस कल जब से आया है ये कर रहा हूँ, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई उनका ये कहना था कि भाई, एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया जी तेल तो तिलों में से निकलता है, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम इसको क्यों बेयर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बेयर करना चाहिए, हम नहीं बेयर करेंगे। तो अभी जब क्रेडिट कार्ड यूज होता था MDR के मामले में तो उसमें 2 तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी। कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे, पर आपको जो हम उनसे बैंक चार्ज लेता है 2%, 1% वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए ₹10,000 की चीज है तो आपसे वो 200-300 फालतू ले लिए जाते थे कि भाई ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दीजिए। कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज ₹10,000 की है तो पहले से ही उसको ₹10,200 उसकी कीमत रख दी, जिससे वो एडिशनल ₹200 में जो उनको MDR भुगतान करना पड़ता है वो करे। तो मैंने सुझाव रूप में इसमें रखा क्योंकि मंशा NPCI की सरकार की ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारीगण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि एक कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे MDR के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका, आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए, हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं UPI के, अगर मैं महीने के 2,000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शन पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या MDR का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा और अगर ऐसा लगा कि कैश टू GDP रेशियो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से ये आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या UPI के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से UPI पिछले 10 साल में बढ़ा है आपको वो सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे देन देयर विल बी अ रीथॉट एंड देयर विल बी अ रीविजिट कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है

0: क्या है, वो 4.82 आई है
1: जी।
0: तो लोगों को थोड़ा सा महंगाई का जो पेन है वो फील हो रहा है, इसमें तो कोई हम इनसे इनकार नहीं सकते, तो ऑथराइज जो आधिकारिक आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने ही है। उसमें अगर ये और जुड़ जाता है, ये अगर दुकानदार इस प्रकार करने लगते हैं या वेंडर्स इस प्रकार करने लगते हैं लोगों के ऊपर पास ऑन, मुझे ऐसा एक और मेरा सुझाव था कि दो हिस्सों में वेंडर्स को बांटे जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जो बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ा काम करते हैं वो तो एमडीआर को पास ऑन नहीं करते हैं, बड़े होटल्स हैं, आप कोई लग्जरी का सामान खरीद रहे हैं, महंगा सामान खरीद रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए 0.4% मायने नहीं रखता क्योंकि उनका मार्जिन जाता है। पर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर मुझे लगता है कि एक रिविजिट किया जा सकता है आने वाले समय पर। पर ये सब कुछ निर्भर करेगा कोलेटेड डेटा पे कि क्या डेटा निकल के आता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के एक दो महीने तीन महीने के अंदर, यूपीआई का ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। पर सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के ऊपर भार डाला जाए, लोगों से वसूली की जाए, ये कतई ये मंशा नहीं है। जहां तक व्यापारियों की शिकायत है, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा व्यापारियों की भी जो इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाए।
1: विकास जी, थोड़ी चर्चा छोटे व्यापारियों की भी कर लेते हैं। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए जो नया फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 1,00,000 रुपए तक प्रति महीने यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट्स छोटे मर्चेंट्स के लिए जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क है। आपसे समझना चाहेंगे कि 1,00,000 की ही सीमा क्यों रखी गई? क्या इससे छोटे और बड़े मर्चेंट के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो बेहतर तरीके से होगा? और क्या छोटे मर्चेंट्स के लिए यूपीआई की उपयोगिता अब भी आप समझते हैं बने रहेगी?
2: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए। एक कि 96% रोज जो एक लगभग आपकी 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले, तो बाकी बचा 4% का सब हम जो जितने भी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शंस, इसकी बात हम कर रहे हैं। छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1,00,000 का उन्होंने सीमा लगाया है, मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का, क्योंकि आजकल 1,00,000 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है और रोज उसकी जो है कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है, तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता 10,000 रुपया दिन में हो गया, तो इस हिसाब से उसका 1,00,000 रुपया थोड़ा सा कम लग रहा है। हो सकता है उसको सरकार रिव्यू करेंगे और उसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा, पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आपके रेलवे टिकट है और इंश्योरेंस पेमेंट है, इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज 5 रुपए रखा गया है वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा। तो मेरे विचार से तो यूपीआई पर एमडीआर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है, पर यूपीआई को फ्री रखना बहुत अच्छा था लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए हैं, आगे चल के और बढ़ेंगे, तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है तो इनोवेशन की आवश्यकता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट में सहूलियत रहेगी
1: जी।
2: बाकी यूपीआई का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय, और ये कोई भी आदमी पूरी कैश इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है, कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मर्चेंट्स, बट आई थिंक विदिन ए पीरियड ऑफ 6 months और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे
1: जी। शरद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है, हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में यूपीआई चल रहा है, ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईज के लिए जो सुविधाएं हैं क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और वो किस तरीके का होगा?
0: नहीं, मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है, आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है, बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है, जो बैंकिंग प्रणाली है, उन सबको वो करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए, कहीं कोई लीकेज हो गई, आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर, तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है। लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर

0: से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड, कन्वीनियंट, फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है थोड़ी सी फी पे करके। मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था। 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था, पहले आदि हो गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी, तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है। तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके। बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था, जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं। तो ये सदा के लिए कैसे ये निशुल्क रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं, ओवरऑल ना देखूं। और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई को मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा, बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं आप देखिए, ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का। तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे? वो तो नहीं आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ तो वो कहते हैं जी यहाँ तो सब निशुल्क है, तो हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है। और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं, इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूं यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया
1: जी।
0: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, और वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है, वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही
2: है। ना केवल बिजनेस बढ़ा है, उसमें देखिए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जो कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
1: जी,
2: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे। लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, कि केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, कुछ इज फुल प्रूफ
1: जी।
2: तो ये भी है, 6.5 करोड़ मार्चेंट्स आपके जुड़ गए हैं इसमें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का अपार उनको स्कोप मिल रहा है
1: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि MDR कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। UPI का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, यह भारत के एक आम नागरिक को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी, और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे UPI भुगतान में MDR की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

करण तनु पवी जस्सी सत श्री अकाल कहंदे ने बहुत बहुत जी आया जी स्वागत करते हैं थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम दे विच। इस तों बाद सानू बठिंडा तों मैसेज करते हैं पिंड नथाणा तों गल कर रहे हैं हरजिंदर शिंदा जसबीर जस्सी सीता ते गीता सानू मैसेज भेज रहे हैं जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। इस तों बाद जिहड़ा मैसेज आया सानू नेपा नगर तो मध्य प्रदेश तो सानू मैसेज कर रहे हैं जी बहुत बहुत स्वागत है जी। पंजाब तो बाहरों भी मैसेज आ रहे हैं बहुत खुशी होंगी है जो थोड़े इस प्रोग्राम के सानू मैसेज आते हैं। सुदर्शन

बिल्कुल जी, सजना भी बनता है जे सजना लई सजना होवे। क्या बात है, बहुत सोहना गीत तुसी सुन रहे सी, आशा भोसले उन्हां दी आवाज़ दे विच। हुण चलदे हां अपने वट्सएप वल नूं, क्योंकि वट्सएप दे मैसेज असी अज पढ़ने हां, और वट्सएप दे विच सानूं मैसेज सरोते बहुत प्यार कर रहे ने सानूं मैसेज भेज के। अगले मैसेज आया जी कनेरा मोहल्ला पटियाला तों, बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता मैसेज भेज रहे ने। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम विच। अगे मैसेज आया जी हीरावाली जिला फाजिलका तो पक्के स्रोता, जे तुसी पक्के स्रोते हो तो असी भी पक्के जड़े आरजे हैं, और बहुत बहुत प्यार तुसी दे रहे हो सानू। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम दे विच जुड़न वास्ते, तह दिलो असी स्वागत करते हैं। और गल करते हैं जिहड़े सानू मैसेज भेज रहे उन्हां दा नाम सुभाष गुदारा हुणी मैसेज कर रहे ने, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े साढ़े इस प्रोग्राम दे विच। अगे मैसेज भेज रहे ने सरवन, कहिंदे पूरे परिवार वालों सानू मैसेज आया जी। इस तों बाद मैसेज आया संजय, नमन, अपार, उन्हां दा मैसेज सानू आ रहा है जी। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम विच। और इस तो बाद जो मैसेज आया कहते हैं कि नमस्कार जी प्रोग्राम बहुत वधिया कर रहे हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा। मैसेज आया जी जखौद राजस्थान तो मैसेज कर रहे हैं, शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम के। इस तो बाद जो मैसेज कर रहे हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजू, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनकीरत, मनराज, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम। इस तो बाद जो मैसेज आया हिमांशी, डॉली सिंह, सलिंदर सिंह, नवराज, सिमर, जशन चंडीगढ़ तो मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सारे स्रोतियों का प्यार करने वाले का बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम के। इस तो बाद जो मैसेज आया चिलकाना तो मोहम्मद जरीफ अंसारी, नैन अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश अंसारी और नाजिम अंसारी सानू मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम के। और नमस्ते कह रहे हैं सानू जी, प्यार भरी सत श्रीकाल, नमस्कार जी, कहते कोई भी गीत सुना दो। आदर्श नगर बलौर तो गल कर रहे हैं पंजाब तो।

बंशीलाल संधु, कबीर ते जसबीर संधु सानू मैसेज कर रहे ने। वरनीत पवनीत और संधु, सारा संधु परिवार सानू मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज सानू आया मल्होत्रा परिवार वालों, गुरैन दत्ता मल्होत्रा, शीतल, तनवीर, अनुभव, वीर मल्होत्रा। महेंद्र कपूर की आवाज़ में कहते कोई भी गीत।

कहते कोई भी गीत लगा दो जी, शमसूल कुमार राही, शहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान सानू मैसेज कर रहे हैं। सारे स्रोतियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। लो जी हुण वेला हो गया साढ़े इस प्रोग्राम के अगले गीत का जी, आनंद माणो जी इस गीत का।

जी हाँ बिल्कुल, होश भी फेके में रहेगी जब नशा ही उल्फत दचाया होगा। जी हाँ, प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश चल रहा है और थोड़ी फरमाइश सानू व्हाट्सएप पे आ रही है और थोड़े व्हाट्सएप वाले मैसेज ऐसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि फोन पर आला था प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरिया व्हाट्सएप पे थोड़ी फरमाइश भी जा रही हैं, थोड़े मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं। लो जी हुण वारी है अगले मैसेज सानू आए हुए ने, जिहड़े उहनां दे नाम सलाम दुआ करन दी वारी है। लो जी सानू मैसेज कर रहे ने

फर्व प्रवीण तिमान चिराग रजत तिमान राजेश विमान गगन जी नमस्कार सत श्री अकाल धन्यवाद मेहरबानी आपकी थोड़ी सब तो पहला मेहरबानी जी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा सा इस प्रोग्राम में जुड़न लिए इस तो बाद जो साढ़े तक जुड़ चुके हैं साढ़े जो अगले वट्सएप पर सू मैसेज आया मोहम्मद असमान अंसारी मोहम्मद कलीम अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम से जुड़न लिए और इस तो बाद जेयर पाल के पूरा पाल परिवार सराबा नगर जलंधर तो सू मैसेज कर रहे हैं सराबा नगर जलंधर तो बहुत लागे है साढ़े जे एन आखते हैं सू सा प्रोग्राम प्रोग्राम भी थोड़ा ही है असं भी थोड़े हैं थोड़ा स्वागत करते हैं प्रोग्राम रानी रूपमती का गीत है लौट के आ जा मेरे मीत बिल्कुल जी लौट के लियावे मीत भी इस तो बाद जो मैसेज कर रहे हैं साढ़े अगले स्रोता सू मैसेज कर रहे हैं कह रहे हैं कहते कोई भी गीत लगा दो शुक्रिया करते हैं जी।

और मैसेज भेजे रहे हैं मोहम्मद सैयद अवासी, निगहत परवीन अवासी, शाहानबाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, टपूरा अवासी परिवार सब मैसेज कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है साढ़े इस प्रोग्राम से जुड़ने लिए। मैं एक बेनती करदा कि जे तुसी एक बार मैसेज कर रहे हो और थोड़ा मैसेज पढ़िया गया तुसी फिर तो थानू मैसेज ना करो, क्योंकि अगले जेड़े साढ़े होर भी बहुत सारे यहोजे स्रोता ने जेड़े सानू मैसेज कर रहे हैं पर उन्हां दे मैसेज नहीं पढ़े जा रहे। अगला जेड़ा मैसेज सानू आया है वह आया है वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मैसेज करते हैं मिंटू टोमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा कहते कोई भी गीत लगा दूं। जी हाँ बिल्कुल लगावांगे गीत। इस तो बाद जेड़ा मैसेज आया नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो नरेंद्र सुधार।

सुधार, हिमांशु सुधार, पवन सुधार कहते कोई भी गीत सुना दो। और मैसेज आया है चुटाला हरियाणा तो मैसेज कर देने। दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम थोड़ा सारे का। और इस तो बाद जो मैसेज आया सानू नवतेज सिंह बराड, पिंड कलकला, जिला मोगा, मोगे तो सानू मैसेज आया है। बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा सा इस प्रोग्राम च आने का। और सारे के सारे स्रोते जो सानू मैसेज कर रहे हैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई। असी सारा एक परिवार है और मिलकर इस प्रोग्राम का आनंद माणना है। लो हुण वारी है साडे इस अगले गीत की।

जी हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश चल रहा और ये असी थोड़िया फरमाइशा लेनी है। जिमें जिमें थोड़े वट्सएप के मैसेज आए आ रहे हैं और असी थोड़े फरमाइशा पूरिया करते रहेंगे जी। जी हाँ, फरमाइशी प्रोग्राम के हूँ जो अगला मैसेज आया है शिवाजी चौंक कटनी तो जो मैसेज आया अनिल तमरकर अमर तमकर दिलीप वर्मा राजू रजन रजक संजीव वर्मा विपिन गुप्ता अरुण संजय पवन यादव सुनील जैन लालू सोना मोना हनी यस सौम्या ते उन्हां दे मम्मा पापा पूरे दे पूरे परिवार वालों सानूं मैसेज आया। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा साडे इस प्रोग्राम ते जुड़न लई। इस तों बाद जिहड़ा मैसेज आया सत श्री अकाल कहिंदे ने इकबाल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम ते जुड़न लई। रजिंदर कौर अमनदीप सिंह हठूर सिमरजीत कौर पिंड हठूर तो गल कर रहे हैं जिला लुधियाना। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम।

जी हाँ, तुसी सुन रहे सी बॉर्डर मूवी का एक गीत, और बहुत फेमस गीत सी ये। हुण भी गीत ये जिंदा है, बहुत प्यारा गीत है। इस तो बाद जिहड़े सानू मैसेज कर रहे ने, हुण वारी है उन्हां दे मैसेज पढ़न दी। मैसेज आया सानू सहारनपुर तो, मैसेज आया जनकपुरी तो। जॉन रोजी पर्ल ते विलिस सानू मैसेज कर देने, कहिंदे गीत लगा देना कोई भी। उस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया सदर बाजार कुरावली तो, मैसेज आया अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। जी बहुत सारा प्यार आ रहा है जी सानू स्रोतियां वालों। इस तो बाद हुण वारी है अगले गीत दी, आनंद माणो जी इस गीत का।

0: प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration.

वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा गीत जी फरमाइश सानू चंडीगढ़ तो राजू जी ने की है। उम्मीद करदा जी तुसीं सारयां ने इंजॉय किया होगा। मेरे ख्याल में वैसे राजू जी ने प्रोग्राम का रंग बन दिता, एक बार पूरा जो ना स्टार्ट करता गड्डी है जी। तो इस तरह के प्यारे प्यारे गल्लां प्यारे प्यारे गीत सुनते रहेंगे। तुसीं भी प्रोग्राम का हिस्सा बनो, सानू कॉल करो, साडा नंबर नोट करो 0181 3142 171। और तुसी वट्सएप मैसेज भेजना चाहते हो, साडा नंबर नोट करो 9465536077। एक छोटा जिहा वादा कर रहा जी अपने सारे स्रोतियां नाल, रब वर्गे स्रोतियां नाल, कि तुहाडा मैसेज जरूर जरूर पढ़िया जाएगा और तुहाडा नाम लेके तुसी जो छोटा मोटा संदेश भी नाल लिख के भेजोगे वह भी जरूर पढ़िया जाएगा। सो निराश नहीं होना, प्रोग्राम के नाल जुड़े रहो। और आओ देखते हैं जी अगले कॉलर कौन ने। हैलो हैलो हैलो, लगता जी कॉल डिसकनैक्ट हो गई है, पर कोई गल नहीं जी, असी कुछ वट्सएप मैसेज फटाफट शामिल कर लें जी।

जिला मुरादाबाद पिंड दुल्लापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, काजल मानवी, सीमा तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी तो बहुत सारे साथी। इन सब दी रलमी फरमाइश ते आओ सुनदे हां जी प्रोग्राम दी अगली पेशकश नसीबो लाल ते हदीका दे गाया हुआ एक पंजाबी युगल गीत।

व्हाट्सएप मैसेज सानू मिलिया जी कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा स्वीटी दीवाना गुरवंत सिंह जौड़ा यह सुनना चाहते हैं जी हंसराज हंस का गाया हुआ कोई भी पंजाबी गीत तो आओ जी फिर पहला सुनते हैं हदीके का गाया हुआ एक पंजाबी गीत उस तो बाद सुनेंगे हंसराज हंस का गाया हुआ एक पंजाबी गीत

एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। लो जी अगला व्हाट्सएप मैसेज सानू भेज रही ने अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा, प्रतिशा संधु ते मैक्स। कहते हैं जी कोई भी सानू पंजाबी गीत सुना दिओ, बहुत बहुत शुक्रिया। रहने वाले ने जी कुलराम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर दे, इन्हों का बहुत बहुत स्वागत है, नाल नाल शुक्रिया जी। लकी हनुमानगढ़ राजस्थान तो मैसेज भेज रहे हैं, इन्हों के नाल ने एकम, त्रिशा, अर्शिता, आवेश। यह सुनना चाहते हैं सुरजीत पिंद रखे का कोई भी पंजाबी गीत। लो जी इन्हों की पसंद का गीत इन्हों तक सुनना पहुँचाने जी, आओ इंजॉय करिए इस गीत को।

लो जी, अगला खत सानू भेज रहे ने मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, बीपे शर्मा। एक दिन कोई भी पंजाबी गीत प्ले कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी खत भेजन दे लई। अनारकली बाजार जगराओं तो सानू चिट्ठी भेज रहे ने सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या ते भाई सुचा पाठक। इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। इन्हें सब दिली मेरी फरमाइश थे। आओ सुन दिया प्रोग्राम की अगली पेशकश, बब्बू मान का गायक पंजाबी गीत। अगर तुम भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो सू कॉल करो 081-3-42-171।

बहुत ही प्यारा गीत सानू सुनवाया तरसेम जी ने और उम्मीद करते हैं तुसी भी इस गीत का पूरा पूरा आनंद माणिया होगा। अगला खत सानू भेज रहे ने चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल हंसमुख जिंदल यह सुनना चाहते ने एमी विरक का कोई भी पंजाबी गीत। लो जी प्रोग्राम की अगली पेशकश तक पहुँच रही है जी।

प्रॉब्लम चल रही जी सुगात सर्किट के मुताबिक इस वे रात के 12:43 होए ने, जिस तरह कि मैं तुम्हें शुरू शुरू दस्या सी प्रोग्राम दे कि साढ़ा 7 सवेरे 1 बजे तक रहेगा। अगर तुम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो सू फटाफट कॉल करो जी, साढ़ा नंबर है 0181 43 171 और वट्सअप है 94655 36077। अगला मैसेज सू मिल रहा जी अनारकली बाजार जगराओं तो, भेजने ने सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा ते बहुत सारे साथी। यह सुनना चाहते ने पुराना गीत कोठी। इस गीत को लभने मैं काफ़ी मुशक्कत करनी पई क्योंकि महेंद्र कपूर जी की आवाज़ों के कोठी गीत युगल गीत है अनुराधा पौडवाल जी के नाल। अगर तुसी फरमैश भेज दियो तो कोशिश करो कि प्रॉपरली सही तरीके जरा सिंगर का नाम दसो, लभन थोड़ी आसानी होंगी है। ठीक है जी, थोड़ी पसंद का गीत अनुराधा पौडवाल और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में युगल गीत तक पहुँच रहा जी। मैसेज लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

इस गीत ने लिए अपने आज दोस्तों प्रोग्राम सुगात इथे खत्म करन दी इजाजत दियो, पर तुसी किधर जाना साडे नाल इस तरह बने रहो, साडे बाकी दे प्रोग्राम जारी रहणगे। खुश रहो, आबाद रहो, चाहे जिंदा रहो चाहे फरीदाबाद रहो। दोबारा बहुत जल्दी मिलन दे वादे नाल इजाजत दियो जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

क्यों जी, फिर आनंद आया गीत सुन के, अच्छा लगया। उम्मीद करना तुसी एंजॉय किया होगा। आओ हुण सुनदे हां जी दूसरा गीत, जगजीत सिंह हुण दी आवाज़ां दे विच।

0: बजरी कड़ा बजदा कड़ोली बजदी कित गागर बजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर बजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर बजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर बजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर बजदी
1: सुन मुंडिया।

लड़दिए जोर लड़द दरानी लड़दिए कित मैनू।

साचे ते पवना पया, पवना ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, कटकट जोत समोए। ये फरमान अकाल पुरख दी महिमा बयान करता है। सृष्टि दे आरंभ विच कुछ भी नहीं सी, अरबद नरबद तंदुकारा वाली अवस्था सी। अकाल पुरख अपनी अफूर अवस्था विच बैठा होया सी, ना तरत सी, ना आकाश सी, ते ना ही पताल सी, ना दिन सी, ना रात सी, ना चंद्रमा सी, ते ना सूरज सी। बस अकाल पुरख अपनी सुन्न अवस्था विच, भाव शून्य अवस्था विच आसन लाई बैठा सी। अकाल पुरख दी उत्पत्ति तो बाद सच होंद विच आया, उपरंत तिन्ने पवन धरती आकाश ते पताल साजे गए। सृष्टि दी रचना, खंडा ब्रह्मंडा दी रचना हुई, कुदरत दी रचना हुई। सृष्टि दे जीव रचे गए, जीव जंत वनस्पत आदि दी रचना हो गई। अकाल पुरख दी सर्वोत्तम कृत अर्थात मनुखा जून होंद विच आई। समय दे परिवर्तन दे नाल नाल मनुखी सुभा दे परिवर्तन दी गल मन्नी जांदी है, क्योंकि चंद सूरज ग्रहां तारियां नक्षत्रां दे परिवर्तन दा मनुखी सुभाव पर डूंगा प्रभाव पैंदा है। जदों सूरज एक रास तों दूजी रास विच जांदा है तां ओ क्रांति आउंदी है जिसनूं संक्रांति कहा जाता है, ते जदों चंद्रमा पूरन हुंदा है तां उसनूं पूरन मास कहा जाता है। गुरबाणी विच रुत्तां दे परिवर्तन दी गल अते समय दे परिवर्तन दे नाल मनुखी सुभाव उपर इस दे असर दी बात कीती गई है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग विच श्री बारह मां दी रचना कीती, ते साहिब श्री गुरु

0: अर्जन देव जी ने मांज राग विच श्री बारह मां दी रचना कीती कि किस तरह उस अकाल पुरख दे हुकम विच हर एक परिवर्तन नू सुखावा बनाउणा है। सरवण करदे हां श्री बारह मां मांज विचों अज आरंभ होए महीने दा पाठ ते पाठ दी व्याख्या। पाठ ते व्याख्या कीती है ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरा।
1: असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आण मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाई जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, आप त्याग बिनती करें

प्रभ मिण दूजा को नहीं, नानक हर शरण आए। असु सुखी वसंदयां, जिना मया हर राय। असु सुखी वसंदयां, जिना मया हर राय। असु दे महीने दा संदेश उपदेश, ये ठंडी मिठी रुत्त। भादों दा दुचित्तापन खत्म हो गया। ठंडी मिठी रुत्त, प्रेम ठंडा है, प्रेम मिठा है। प्रेम विच गर्माश नहीं, भाव प्रेम विच जलन नहीं, दूजे नू जलाना नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, तृष्णा नहीं। इस वास्ते प्रेम ठंडा है, प्रेम रसदायक है। जिसनू रोज़ रोज़ याद करिए, याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। जैसे भोजन छक लईए, छकया होया भोजन कुछ समय बाद पच के रस बन के खून बन जाता है। जो रगां दे गर्दिश करता है, शरीर दे जो गर्दिश करता है खून, वो पहले भोजन सी। खादा होया भोजन कुछ समय बाद पच के रस बन के खून बन जाता है और नसां दे दौड़ता है। बार बार जिसनू याद करिए, जिसका सिमरन करिए, जिसनू चेते करिए, एक दिन सिमरन ही प्रेम बन जाता है, एक दिन याद ही प्यार बन जाती है। और फिर प्यार दा धागा फिर टुटदा ने, हर वक्त ओ प्रेम दी तार अंदर बनी रहती है। असू दा महीना उस जीव स्त्री दा समझ लो जिस दे अंदर प्रेम दी उमंग पैदा हो गई है, तरंग पैदा हो गई है। ये इस तरह है जिवें खादा होया भोजन वाकई खून बन गया। कई दफ़ा कई लोग खांदे पींदे ते बहुत ने, पर खून नहीं बनता। और ऐसे वैद आचार्य भी कहिंदे ने शरीर दे च नुक्स है कि खांदा पींदा सब कुछ है पर खून नहीं बनता। कई लोग सत्संग करदे ने, बाणी पढ़दे ने, जप तप करदे ने, पर उन्हां दे अंदर प्यार नहीं पैदा हुंदा, प्रेम नहीं पैदा हुंदा। लाजमी कुछ मानसिक खराबी है, शरीर दे च कुछ नुक्स होवे तो खादा होया भोजन खून नहीं बनता। मन विच प्रबल नुक्स होवे तो कीता होया जप, कीता होया तप प्रेम नहीं बनता। इलाज है शरीर नू ठीक रखण दा, ताकि खादा होया भोजन खून बन सके। सत्संग इस वास्ते है कि मन विचों सारियां खराबियां, सारे विकार निकलन, ताकि कीता होया जप, कीती हुई याद प्रेम बन सके। और प्रेम असू दा महीना है, ठंडा मिठा महीना है। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। असू दा महीना मन दिच चाव पैदा हो गए, उमंग पैदा हो गई, हरी किवें मिले, हरी किवें मिले। जिस दे लई प्यार पैदा हो जाए, बार बार मन उसनों मिलन नू लोचता है, उदे दर्शना नू लोचता है। मन तन प्यार

0: दर्शना दी, चाहत पैदा हो गई है। संत सहाई प्रेम के औतन के लागां पाए, प्रेमिया दे मददगार ने कौन गुरु, प्रेमिया दे मददगार ने कौन संत जन। मैं उन्हां दे पैरी पैना क्यों, क्यों मेरे प्रेम नु कोई दिशा दे सकदे ने, वह मेरे प्रेम नु मार्ग दे सकदे ने, ताकि मेरा प्रेम परमात्मा दे दर्शन कराण विच सफल हो सके, सहायक हो सके। इतनी गल तो स्पष्ट है कि प्रेम तो बिना हिरदे की शुद्धि नहीं होंदी। बड़े तो बड़े दानियां दे मन भी मैले रहिंदे ने, बड़े तो बड़े ज्ञानियां दे मन भी मैले रहिंदे ने, वड्डी तो वड्डी सेवा करन वालियां दे चित भी कठोर बने रहिंदे ने, लेकिन जिस हिरदे च प्रेम पैदा हो गया और जिस दे प्रति प्रेम पैदा हो गया, वह हिरदा शुद्ध हो जाता है, वह हिरदा पावन हो जाता है। जिस नाल प्रेम है उस नाल छल करना बहुत औखा है, जिस नाल प्रेम है उसनों धोखा देना बहुत औखा है, जिस नाल प्रेम है उस नाल कपट करना बड़ा औखा है। तो परमात्मा का प्रेम तो समूह ब्रह्मंड नाल प्रेम है, पूरन पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गोर मरी मठ भूल न माने। वो खालिस है, वो शुद्ध है, वो पावन है। जिस दे अंदर पूर्ण ब्रह्मंड का प्रेम पैदा हो गया, वो ब्रह्मंड दे प्रति दयालु हो जाएगा, वो ब्रह्मंड दे प्रति सेवा भाव नाल देखेगा, वो ब्रह्मंड दे किसे नाल भी छल ते कपट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस दे अंदर प्रेम पैदा हो गया है, प्यार पैदा हो गया है। प्रेम ही हिरदे नु शुद्ध कर देंदा है, पावन कर देंदा है। और प्रेम दी इस सुरत नु, प्रेम दे इस धागे नु संत जन परमात्मा तक लै जाण विच सहायक ने, मददगार ने। विण प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी ना ही जाए, परमात्मा तो बिना परम आनंद की प्राप्ति कित्थों होवे, दूजी होर कोई थां ही नहीं है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, प्रेम एक ऐसा रस है जिन्हां ने भी चख लिया उन्हां दे हिरदे विच भुख नहीं रहिंदी, सदा हिरदे तृप्त रहिंदे ने, रजे हुए रहिंदे ने। आप त्याग बिनती करें लेहू प्रभु लड़ लाए, प्रेम नाल भिजे हिरदे किस तरह जीवदे ने। इस तरह दियां जीव इस्त्रियां हर वक्त बेनती विच जीवदियां ने, अरदास ते जोरी दे जीवदियां ने, ए प्रभु तू अपने लड़ ला ले, अपने नाल जोड़ ले। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए, जिन्हां नूं परिपूर्ण परमात्मा ने अपने नाल मिला लिया, जोड़ लिया, वह फिर कदी बिछड़दे नहीं। संसार विच मित्र मिले है बिछड़ सकता है, पुत्र मिले है बिछड़ जाएगा, परिवार मिले है बिछड़ जाएगा, धन संपदा मिली है बिछड़ जाएगी, सब कुछ बिछड़ जाता है। पर मिलिया होई ना विछड़े, जे मिलिया होई, जे कृपा परमात्मा मिल जाए, प्रभु मिल जाए, फिर विछोड़ा है ही नहीं, से विछड़ कते ना जाए। प्रभु विण दूजा को नहीं नानक हर सरनाए, जो मिल के कदी विछड़े ना, परमात्मा तो बिना होर कोई भी नहीं, होर कोई भी नहीं। असु सुखी वसंदया जिना मया हर राय, असु दा महीना उना लई सुखमई होंदा है, जिन्हां दे मन असू दे महीने दी तरह ने ओ सुखमई ने, और उन्हां दे ते हर वक्त प्रभु दी कृपा बनी रहिंदी है, हर वक्त परमात्मा दी मेहर बनी रहिंदी है, ओ बख्शिश दे पात्र बने रहिंदे ने, प्रेम नाल तृप्त रहिंदे ने, प्रेम नाल ठंडे रहिंदे ने, और सरबत दे भले विच जीवदे ने, सरबत दा भला मंगदे ही रहिंदे।
1: आप जी सरवण कर रहे सो श्री बारहवां मांझ विचों इस महीने दा पाठ ते पाठ दी व्याख्या। पाठ ते व्याख्या कीती सी ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी अपने उचारित एक शब्द विच फरमाउंदे ने कि सच्चे सुख दी प्राप्ति वास्ते उस प्रभु दा नाम जपना चाहिदा है। जिहड़े वडभागे प्राणी उस प्रभु दा नाम जपदे ने, उना उत्ते ग्रहां दा कोई असर नहीं हुंदा, क्योंकि उना नूं सब तो उत्तम प्रभु दा नाम प्राप्त हो जांदा है। वो फिर शगन ते अपशगन दी विचार भी नहीं करदे, बस उस अकाल पुरख दी

कीर्ति ही करदे ने ते आनंद विच विचरदे ने। सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गरह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। सरवण करदे आं भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गरह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द। अकाल पुरख प्रभु का नाम सुखदायक अते कल्याणकारी है, इसे करके ता हिदायत है। हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजै। मिटह कमाणे पाप चिराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै। पर इस नाम नू ता ही जपया जा सकदा है जिकर पखंड आदि छड़ के मन कपट तो रहत हो जावे। ता ही निता प्रति उस अकाल पुरख प्रभु दा नाम लिया जा सकदा है। रामकली कर दूजा सुरलेख अधीन उचारे गए शब्द विच भगत नामदेव जी इस तत् की प्रोड़ता करते ने। सुनदे हां जसजीत कौर होरां पासों वार्ता। हर का नाम नित नितह लीजै।
1: ए पंक्ति रामकली राग विच भगत नामदेव जी दे मुखार बिंतो उच्चारण कीती जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र रंग 973 ते सुभाए मान है। आज तो 725 साल पहले दे समय दे आम लोकां दियां नजरां विच पावे भगत नामदेव जी छींबे हन, पर उना दे प्रभु प्यार ते उस विच अगाध निश्चे वाली भावना सदका ओ अकाल पुरख नाल प्यार करन वाले जीवां दे दिलां दे राजे ते हिरदियां दी तड़कन मन्ने जांदे हन। गुरु रामदास जी इना दे प्रभु प्रेम दी उच्चता ते आधार ते उना बारे बचन करदे हन। नाम दियो प्रीत लगी हर सेती, लोक छीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम दियो मुख लाए। गुरु अर्जन देव जी भी फरमाते हैं कि भगत नाम देव जी दा मन हर वेले परमात्मा नाल जुड़िया रहिंदा है, इस बरकत नाल कि उसनू किसी दी मुथाजी नहीं रही। गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छिपरो होयो लाखीना। भगत नाम देव जी दे काठ शब्द 18 रागा विच गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज हन। विचार अधीन पंक्ति विच भगत जी सारी मनुखता नू समझा रहे हन कि परमात्मा दा नाम सदा जपना चाहिदा है। बानी विच वद तो वद जोर अकाल पुरख नाल अभेदता प्राप्त करन उत्ते दिता गया है, ते इस खातर जो मार्ग दस्या गया है उस दा नाम है नाम जपना। रामकली राग विच 5वें पातशाह नाम दी महिमा इस तरह बयान करदे हन। सोई सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। भगत नाम देव जी आसा राग विच फरमाउंदे हन कि उना दा मन कपड़ा मिनन वाला गज ते जीब कैंची बन गई है। उना नू किसे उच्ची नीवी जाती जा गोत दी परवाह नहीं, क्योंकि ओ दिन रात परमात्मा दा नाम सिमरदे हन। इस शरीर मट्टी विच उना ने अपने आपनो नाम रंग नाल रंगिया होया है ते नाम दी सियून लाई होई है। नाम तो बिना ओ एक कड़ी भी नहीं रह सकदे। ओ हरी दे गुण गा के 8 पहर अपने खसम प्रभु नू याद करदे रहंदे हन। उना दा मन प्रभु दे नाल सीता गया है। उना नू सोने दी सुई मिली है जिस दी बरकत नाल उना दा मन शुद्ध निर्मल हो गया है। मन मेरो गज जेबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी, कहा करो जाती कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती, रांगन रागो सीवन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुन गावो, 8 पहर अपना खसम ते आवो, सोने की सुई रूपे का तागा, नामे का चित हर स्यों लागा। सवाल पैदा हुंदा है कि ए नाम कदों जपना है, ता जवाब है हर का नाम नित निते लीजे। संखेप विच यही कहा जा सकता है कि विचार अधीन पंक्ति विच भगत नाम

0: देव जी मन नू समझा रहे हन, हे पखंडी मन, कपट ना कर, छड़ दे ए कपट करना, हमेशा उस हरी परमात्मा वाहिगुरु दा सिमरन करया कर, उसनु याद करया कर, उसकी बंदगी करया कर, उसनु चेते करया कर, उसका शुकराना करया कर। छोड़ छोड़ रे पखंडी मन कपट ना कीजे, हर का नाम नित निते लीजे।
1: हर का नाम नित निते लीजे। ये वार्ता सुना रहे सन जसजीत कौर। अकाल पुरख परमेश्वर दा नाम जपना, उस दी सिफतो सलाह करनी, उस दे गुण गायन करना, ये सब कुछ उस अकाल पुरख दी कृपा ते ही आधारित है। उही ऐसा सबब बना सकदा है। तांते फिर बेनती करनी चाहिदी है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सरवण करदे हां भाई भगवंत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द अगायन कीता सी पाई भगवंत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

बिन सतगुरु किने ना पाए, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु चाप रखे अनुकार प्रगटा सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

से किति संतोखी जिन सचो सच के आया। उन्हीं मंदे पे न रखे उनका सुकृत धर्म कमाया। उन्हीं दुनिया तोड़े बंदरान पानी थोड़ा खाया। तू बख्शीसी अगला निंदे वह।

0: निभासी।
1: श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिए खाद, पढ़िए जिते बरस बरस, पढ़िए जिते मास।

बड़ी मसानी अंत ना जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे ते नहीं केवल हो मैं शब्द जलाए पोड़े।

0: मते
1: सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याय।

अपरंपर अवतार भरो गावे जम दगन परस रामेश्वर कर कुठार रगते।

0: गावे कुन बरन चार खट दर्शन दे मादक सिमरंथ गुना गावे कुन सहस शेष जे बरस आद अंत लिवलाक्तना गावे कुन महादेव बैरा के जिन तान निरंतर जान्यो कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्यो निर्वैर निरंतर शिष्ट सगल उदरी नाम लेतरो निरंतर गुण गावे संकाद आद जनकाद जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सिक्यथ पलो जग पातालपुरी जयकार दुन कवजन कल वखाने हो हर नाम रसिक नानकुर राज जोग तै माने हो।
1: सतयुग तै मान्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेते तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार कियो उग्र सैन को राज अपै भक्ते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो।
2: गुण गावे रविदास

नामा भगत कबीर सदा गावै समलोचन, भगत बैन गुण रवै सहज आत्म रंग मान, जोग तेहान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान, सुख देओ परीखत गुण रवै गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो, सुख देओ परीखत गुण रवै गौतम रिख जस गायो, कब कल

जाको मन ध्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जाति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा झूठ भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए।

0: कल मैं पाव सागर पार उतारन को।
1: अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, सेव बिरंच धर ध्यान नितह जिस बेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन गड़न समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रसना रसै। श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित है बसै।
2: कल समुंदर पई रूप प्रगट हर नाम उधारने, बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र।

कब मिलो गुण तास जियो, असुन आओ पिरा

सकल लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग करमंग सब फोकट निश्चो करमंग कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी।